0: This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
1: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
2: FM247365
3: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा न होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान-ए-जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
2: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
3: Like us on facebook.com/FM247365 FM247365

0: 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: 100 FM.
4: झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली.
5: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है.
6: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है.
5: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
6: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला.
5: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
7: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज. मजीद मालूमात के लिए अभी 1111 425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से राब्ता करें.
8: शराइत और ज़वाबित लागू है.
3: 100 FM.
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
9: एंड शौकत खानम कराची की तकनीक.
10: एंड सरसब्ज नाइट्रो फॉस को लगा और जीत ताजा.
11: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
12: एंड ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
13: 7365.

0: in setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
1: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेनेटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोपराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से जायद बच्चों का इलाज किया गया है इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेक बुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट
3: خالص اجزاء بھروسمند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
4: سر سب نائٹروفاس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجیں یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمر ٹکٹ موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں تو سر سب نائٹروفاس کو لگا اور جیتتا جا
5: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली
6: ओ खैर है बरकत है बड़ा झूम झूम के गा रहा है खैर है HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है
7: HBL ज़रई बैंक की वजह से
6: हाँ बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला
7: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा
8: जी हाँ पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म फिश फार्म ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रابطہ करें
9: शराइत और ज़वाबित लागू है
10: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर कल रांची से जीती है मुनव्वर फातिमा डायसन अब आप भी हर हफ्ते कार ईवी बाइक गोल्ड कॉइंस और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेक बुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
11: शौकत खानम लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन
12: शौकत खानम कराची की तकनीक
13: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेक बुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट
14: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे 3 की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेक बुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
15: This program is brought to you by
2: HBL Freedom Account Jahan Khab Wahan HBL
12: and Shaukat Khanam Karachi ki takleef
7: and Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja
12: and
16: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
12: and
10: try all new Vatika shampoo nourishes hair naturally
17: like
15: us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: FM 100 traffic update.
1: ट्रैफिक अपडेट के साथ मैं हूं फरोख बाजार शहर कराची की सड़कों और शाहराहों पर ट्रैफिक की सूरत हाल कुछ इस तरह है। एफएम 100 को मिलने वाली इत्तला के मुताबिक गरीब आबाद से हसन स्क्वायर की जानी माने वाले ट्रैक पर ट्रैफिक का दबाव है, जबकि नीपा चौरंगी से हसन स्क्वायर और वहां पुरानी सब्जी मंडी की जानी आने वाले ट्रैक पर भी ट्रैफिक स्लो मूव कर रहा है। इसके साथ साथ कौरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का वो ट्रैफिक जो मोरतुजा चौरंगी से इस वक्त ब्रूस चौरंगी की जानब जा रहा है, उस पर भी ट्रैफिक का दबाव है। लिहाजा वो तमाम लोग जो इन रास्तों पर सफर करने का इरादा रखते हैं अपने टाइम को मैनेज करते हुए आए ताकि बर वक्त अपनी मंजिलों पर पहुंच सके। मजीद अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए एफएम 100 पाकिस्तान।
0: दिस ट्रैफिक अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाय एफएम 100। इट्स 8:45 AM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय फीनिक्स बैटरीज।
2: फीनिक्स लगा और भूल जा, फीनिक्स लगा और भूल जा।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
5: शौकत खानम कराची की तकदीर।
6: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
3: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
7: 100 FM।
8: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली।
9: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
10: खैर ही खैर है, HBL जरई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
9: HBL जरई बैंक की वजह से?
10: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
9: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
10: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111111425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
11: शराइत और ज़वाबित लागू है।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहाँ HBL
1: एंड शौकत खानम कराची की तकलीफ
2: एंड सर सब नाइट्रो फोर्स को लगा और जीतता जा
3: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा
4: एंड ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली।
5: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा, तो आओ हेड करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अजमे इस्तेहकाम मुस्तहकम पाकिस्तान।
6: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: FM 100 like us on facebook.com/FM247365
8: FM 247 365।
9: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
10: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगे।
9: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
11: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
12: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें इससे क्या।
9: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
11: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
12: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
11: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
9: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
12: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
9: आइए वेट से आगे का सोचें।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
2: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: किसने कहा था पैसे बचा?

0: एच बी एल फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ एच बी एल फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां एच बी एल। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय एच बी एल फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां एच बी एल।
1: एंड शौकत खानम कराची की तकलीफ,
2: एंड सर सब नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा,
3: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा,
4: एंड ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
5: FM 100, लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM 247 365

0: in setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
1: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेनेटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोबराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से ज़ायद बच्चों का इलाज किया गया है इन अस्पतालों में 262 इनक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
4: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर कराची से जीती है मुनव्वर फातिमा डायसन अब आप भी हर हफ्ते कार ईवी बाइक गोल्ड कॉइंस और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनामात पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट
5: 100 FM
6: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली
7: ओ खैर है बरकते बड़ा झूम झूम के गा रहा है
8: खैर ही खैर है HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है
7: HBL ज़रई बैंक की वजह से
8: हाँ बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला
7: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा
9: जी हाँ पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म फिश फार्म ज़रई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रابطہ करें
10: शराइत ज़वाबत लागू है
11: शौकत खानम लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन
12: शौकत खानम कराची की तकदीर
13: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
14: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
12: एंड शौकत खानम कराची की तकदीर
15: एंड सरसब्स नाइट्रो फॉस को लगा और जीत ताजा
16: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
3: एंड ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली
17: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247 365

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
1: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
2: Shaukat Khanum, Karachi ki takleef.
3: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanum.org.pk विजिट करें.
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
4: 100 FM.
5: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डाली डाली.
6: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है.
7: खैर ही खैर है. HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है.
6: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
7: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला.
6: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
7: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और मवेशी के लिए भी कर्ज की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज. मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से राब्ता करें.
8: शराइत ज़वाबत लागू है.

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: एंड शौकत खानम कराची की तकलीफ।
2: एंड सर सब नाइट्रो फॉर्स को लगा और जीत ताजा।
3: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
4: एंड ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
5: खवातीनों हजरात, मंशियात वो जहर कातिल है जिसकी संजीदगी का एहसास इंसान को तब होता है जबकि जहर हमारी रगों में जायद कर चुका होता है। वक्ती सुरूर और मजे का लिबादा ओढ़े ये लानत गैर महसूस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल को अपने शिकंजे में ले रही है। मंशियात की लानत में गिरफ्तार होने की एक बड़ी वजह बुरी सोहबत है जिसको अमूमी तौर पर हम नजरअंदाज कर देते हैं जबकि दरअसल इस अमल का ताना बाना बुरी सोहबत और मेल जोल से जाके जुड़ता है। घर देर से लौटना, वालदेन और घर वालों से नजरें चुराना, खानदान और अहबाब की महफिलों से गुरेज करना, गैर मामूली अखराजात में इजाफा, ये सब इसकी बड़ी अलामत है। खुदा रा अपने बच्चों पे नजरें रखे ताकि वो ताहयात आपकी नजरों के सामने रह सके। हमारा आसम एक कौम, एक मंजिल और मंशियात से पाक पाकिस्तान।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking, aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
3: किसने कहा था पैसे बचा।

0: एच बी एल फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ एच बी एल फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां एच बी एल।
1: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247 365

0: 45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
1: 100 FM.
0: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account.
1: 100 FM.
0: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाव, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस्ड कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं। ताहम बाज़ औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता। याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन ओटीपी की तस्दीक या मखसूस यूएसएसडी को डायल करना लाजिम होता है। याद रखें, पीटीए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता। अगर आपने ना तो ओटीपी शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं। ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा। अगर मुकर्रा वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं। शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा। इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राबता नंबर, शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे। इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें। अकाउंट बनने के बाद साइन इन करें और अपना CNIC और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन हो जाएं। याद रखें कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम होगा। लॉग इन होने के बाद बाएं जानिब मौजूद रजिस्टर न्यू कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब शिकायत की तफसीलात दर्ज करें और शिकायत की नौयत मुंतखब करें। इसके बाद शहर, सर्विस, फराहम कुनंदा की किस्म,
6: اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
7: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
8: FM247365

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवजा तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज़ इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.

0: in setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
1: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नैनोटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोबराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से ज़ायद बच्चों का इलाज किया गया है। इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं। बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: वीकली लकी ड्रॉ विनर कल रांची से जीती है मुनव्वर फातिमा डायसन। अब आप भी हर हफ्ते कार ईवी बाइक गोल्ड कॉइंस और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली।
4: Like us on facebook.com/FM247365.

The Lunchtime Special. Only on FM 100.

Assalamu alaikum Pakistan and assalamu alaikum everyone. This is me Fatma Khan aur aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. How are you all? Kya hal hai aap sabke? Kaisa guzar raha hai din? Kya kar liya hai? Kya karne wale hain? To ji as usually hongi aap se khoob sari baatein share karenge kuch information aur saath hi saath program mein hoga bahut sara music, bahut sara music, bahut sari baatein aur janenge aapke hal hawal bhi. और क्या चल रहा है आजकल, क्या कौन कौन से दिन आज के दिन सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, कोई ट्रेंडिंग चीज है या क्या सूरत हाल, इस पर भी होगी बात, तो होंगी आपसे खूब सारी बातें. तो इस सबसे पहले करते हैं प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बकायदगी से आगाज, जो कि होता है एक अदद म्यूजिकल ट्रैक के साथ. तो लेट्स बिगिन.

जी तो हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज, और अब जबकि बाकायदगी से आगाज हो चुका है तो अब हम आपको बताएंगे तरीकाकार कि कैसे आप भी बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। तो इसके लिए आपने करना कुछ यूं है कि जाना है अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप करना है और आपने इसे सेंड कर देना है 3636 पे। तो इस तरीकाकार को फॉलो करें, जल्दी से हाजिरी लगाएं और हमें बताएं कि इस वक्त आप लोग हमें कहां से सुन रहे हैं। इस वक्त आप लोग जो है वो अपने घर पर हैं, इस वक्त आप लोग जो है वो सफर में हैं, इस वक्त आप लोग जो है कोई काम कर रहे हैं या आराम कर रहे हैं, जो भी आपका ऑल दो दिन चल रहा है उस हवाले से भी हम तक आगाही जरूर फराहम करें। और इसी के साथ साथ आज 8th of September है, तो आज हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से दिन मनाए जा रहे हैं और क्या ताजा तरीन सूरत हाल इस वक्त चल रही है, तो इस हवाले से भी आप लोगों तक आगाही फराहम की जाएगी। कराची का मौसम आज के दिन भी काफी बेहतर है, मतलब थोड़ी बहुत गर्मी तो है लेकिन इतनी नहीं है जितनी 12 सितंबर की पेशन गोई है कि जी हां 12 सितंबर से एक बार फिर कराची में वही गर्मी आ जाएगी जो इतने दिनों से कराची से दूर दूर थी, तो वो गर्मी भी आने वाली है। लेकिन फिलहाल ऐसा है कि सितंबर ने थोड़े बहुत असरात दिखाना शुरू कर दिए हैं गर्मी के, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक का काफी शुक्र है कि भाई उतनी वाली गर्मी नहीं आई है जितनी अभी हमने कुछ महीनों पहले एक्सपीरियंस करी थी कराची में। शदीद तरीन गर्मी, पसीना पसीना, धूप और गर्मी, और ये वाली सूरत हाल जो थी वो अब जो है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन 12 सितंबर से एक बार फिर से सुनने में आ रहा है कि जो है वो बारिश की पेशेंगोई भी मौजूद है, यानी कि एक स्ट्रांग चांसेस हैं कि कराची में अगर इस दफा बारिश नहीं हुई ना तो इसके बाद हमें पूरे पूरे 2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। तो 2 महीने का इंतजार जो है वो थोड़ा तवील है, लेकिन कोई बात नहीं, इस दफा तो हमने पूरा साल इंतजार कर लिया तो भाई 2 महीने की क्या बात है। लेकिन बस वही वाली बात है कि बारिश हो तो खैर की हो, और अच्छी बारिश का मूड तो है हम कराची वालों को। और इस वक्त कराची का दर्जा हरारत 31 है जबकि रियल फील्स लाइक इज 34। तो जी हाँ, गर्मी भी है और यही है फिलहाल ताजा तरीन सूरत हाल। तो खैर जी, जब तक आप लोग अपनी हाजिरी लगा रहे हैं हम चलते हैं एक अदद ब्रेक की जानब और आते हैं वापस कुछ ही देर में, तो कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक।

0: in setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
1: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेनेटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोपराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से जायद बच्चों का इलाज किया गया है इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध
2: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे 3 की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
3: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर कराची से जीती है मुनव्वर फातिमा डायसन अब आप भी हर हफ्ते कार ईवी बाइक गोल्ड कॉइंस और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली
4: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM247365

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: हेलो एवरीबॉडी, सो आई एम बैक और आप लोगों के साथ हमारा गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी है। क्या हाल हवाल है आप लोगों के? और हमने कहा था कि भाई जल्दी जल्दी आप लोग अपनी हाजिरी लगाएं 3636 पर मैसेज करके या फिर आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर मैसेज करके। और वहां पे हमारे पास मैसेजेस जो हैं वो आ चुके हैं। नसीर खोसो हमें मैसेज करते हैं, लुक वर्ल्ड कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम लवली आरजे, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसी हैं? अपने भी हाल हवाल हमें जरूर बताएं। जरूना खान कहती हैं आपकी इज्जत का ओएसटी प्ले करें। डन हो गई है भाई डील, जरूर हम इसे प्ले करेंगे। और आजकल वैसे ही ये सबका करंट फेवरेट ड्रामा चल रहा है तो इसका ओएसटी भी बहुत अच्छा है। तो भाई मजे की बात यह है कि बहुत टाइम बाद ना एक मजे की स्टोरी भी हम सबको मिली है देखने के लिए, और उसी के साथ साथ फ्रॉम ए टू जी हर चीज ही बहुत अच्छी है। यानी कि उसका ओएसटी भी अच्छा है, उसकी कास्ट भी बहुत अच्छी है, उसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है। सो एवरीबडी इज एंजॉइंग इट अलॉट। तो बिल्कुल जी हम इसका जो है वो ओएसटी जरूर करेंगे प्रोग्राम में शामिल, ये डील डन रही है। और अभी नहीं, थोड़ा सा आप सब्र करें, हम जरूर इसे शामिल करेंगे। और हमारे पास एक और मैसेज भी आया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आपकी गर्मी आने वाली है ये सुनकर दिल उदास हो जाता है। अल्लाह मेरा भी दिल बड़ा उदास हो जाता है जब मैं ये बात सोचती हूँ, तस्वुर करती हूँ कि अब गर्मी आने वाली है ना। तो ये तो हकीकत है कि इस बात को सुनने के बाद दिल उदास तो हो ही जाता है, पर क्या करें, कब तक गर्मी जो है वो कराची से खफा रहेगी, तो उसने पलटकर तो आना ही आना है। तो ये सूरत हाल है कि भाई गर्मी और कराची का एक अलग सॉर्ट ऑफ लेवल है, और इसी पर हम बात कर चुके हैं और मजीद भी करेंगे। और बहुत सारी बातें हैं जो बाकी हैं जिस पर आपके हाल हवाल, और आज कौन कौन से दिन मनाए जाते हैं इस पर भी हम डालेंगे नजर। लेकिन मैं सोच रही थी कि क्यों ना इससे पहले कदर ट्रैक को करें शामिल, तो सज्जाद अली की आवाज आपको सुनाते हैं, सिंड्रेला, मैं रास्ते में हूं, आ रहा हूं, किसी और की दुल्हन मत बन जाना। तो प्लीज वेट करें सिंड्रेला। मैं जब भी इस ट्रैक को शामिल करती हूँ ना, मैं ये बात जरूर कहती हूँ कि वेट करें, कराची का जो हाल है ना अल्लाह, उसमें इंतजार करना बहुत जरूरी है। तो सिंड्रेला से तो हमारी दरखास्त है ही है कि इंतजार करें, लेकिन बाकी लोगों से भी ये दरखास्त है कि इंतजार करें, हम ट्रैफिक में फंसे हैं।

0: 6:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: शौकत खानम कराची की तकलीफ।
0: Like us on facebook.com/fm247365.
3: FM247365. This is the Lunchtime Special, only on FM 100.

हेलो एवरीबॉडी, तो आप सब सुन रहे हैं प्रोग्राम लंच लाइन स्पेशल विद मी फातिमा खान। और अब हम वापस आ चुके हैं, तो मैंने सोचा कि जी वापस आने के मौके पर क्यों ना आपको स्मार्ट चॉइसेस के बारे में बताया जाए कि आजकल हम बड़े स्मार्ट टाइम में जी रहे हैं, तो क्यों ना आपको कुछ स्मार्ट चॉइसेस भी बताए जाएं। तो मैंने कहा ठीक है जी, वापस आ गए तो आपको बताते हैं। कारोबार को दें स्मार्ट बैंकिंग की आजादी एचबीएल फ्रीडम अकाउंट के साथ, मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक और जदीद ऑनलाइन बैंकिंग, ताकि आप ज्यादा तवज्जो दें अपने बिजनेस पर। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, बैंकिंग होनी चाहिए आसान। एचबीएल फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने रोजमर्रा कारोबारी लेन देन को बनाए मजीद साहिल और तेज। हर बिजनेस ओनर की जरूरत एक ऐसा अकाउंट है जो दे सहूलत भी और आजादी भी। आज ही एचबीएल फ्रीडम अकाउंट खुलवाएं और फायदे उठाएं मुफ्त बैंकिंग सहूलियत का। कारोबारी अदायगी हो या रोजमर्रा ट्रांजैक्शन, एचबीएल फ्रीडम अकाउंट के साथ हर काम अब होगा ज्यादा आसान, ज्यादा स्मार्ट। अपने बिजनेस को दें डिजिटल बैंकिंग का पावर अप, पाकिस्तान की बेहतरीन मोबाइल बैंकिंग ऐप और मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग के साथ सिर्फ एचबीएल फ्रीडम अकाउंट में। कामयाब कारोबार की पहचान है स्मार्ट फैसले। आज ही एचबीएल फ्रीडम अकाउंट अपनाएं और बैंकिंग की झंझट को करें अलविदा। बिजनेस चलाएं एतमाद के साथ, क्योंकि एचबीएल फ्रीडम अकाउंट देता है आपको वो सहूलियत जो हर कारोबार को है दरकार। तो स्मार्ट चॉइसेस आपने भी करनी है अवेल, तो जल्दी से जाएं और अपना एचबीएल फ्रीडम अकाउंट खुलवाएं। देर किस बात की।

0: ओके सो भाई, मैंने कहा टेलीफोन के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि आज टेलीफोन ट्यूसडे मनाया जाता है, तो वो आपको नाजिया हसन की आवाज सुनाते हैं वो ट्रैक जो इस दिन से मुंसलिक है। तो भाई अगर आपको मौका मिलता तो आप किससे कॉल पर बात करते? लुकवल कहती है मैं तो काश आपको कर पाती, आए हाय। लेकिन ऐसी बात नहीं है लुकवल, हमने कॉल पर बात करी है बहुत दफा शो के दौरान, और इसी के साथ साथ मजीद लोग भी अपनी राय हमें दे सकते हैं 3636 पर या फिर आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर कि अगर आपको मौका मिलता तो आप किसको करते कॉल। और आज जो है वो एक्टर डे भी मनाया जा रहा है। ओके, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है एक्टर बनने की और बहुत सारे लोगों के बड़े फेवरेट एक्टर्स होते हैं, तो आज बेसिकली उनका दिन भी है और जो बनना चाहते हैं उनका दिन भी है। आज एक्टर डे मनाया जा रहा है और सबके फेवरेट एक्टर्स भी होते हैं जो हमें बड़ा मजा आता है, उनकी वजह से बहुत सारे ड्रामे या बहुत सारी फिल्में हम अपने पसंदीदा एक्टर्स की वजह से भी देख रहे होते हैं क्योंकि वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो आपके पसंदीदा एक्टर्स कौन है यार, ये भी आप हमें बता सकते हैं। अच्छा लुकवल कहती हैं जी मैं आज की बात कर रही हूँ, हाँ दैट इज राइट, क्योंकि हम आज ही के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई अगर आज क्योंकि स्पेशल डे है टेलीफोन ट्यूसडे तो आप किसको कॉल करते हैं। तो भाई लुकवल कह रही हैं कि जी मैं आपको कॉल करती, बेस्ट हो गया जी एंड थैंक यू फॉर थिंकिंग मी दिस मच गुड। एंड इसी के साथ साथ ब्रेक फिर आ चुका है यार, बातें हमारी चल रही होती हैं और अचानक से हमारी बातों को बीच में आके तोड़ देता है, वो होता है एक अदद ब्रेक। तो ब्रेक की जाने चलते हैं और आते हैं वापस भाई रशीद खान के पसंद के ट्रैक के साथ। सो आपने कहीं नहीं जाना है क्योंकि हमारे हैं वापस एक अदद ब्रेक और ट्रैक के साथ।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय शौकत खानम कराची की तकलीफ।
2: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत। किसी भी

ऑल राइट, सो हमेशा की तरह वी हैड अ ग्रेट टाइम विद ऑल ऑफ यू, और इसी के साथ साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी हुआ जाता है खत्म। तो इंशाल्लाह मेरी होगी आपसे मुलाकात कल फिर सेम प्लेस सेम टाइम। तो रखें अपना भरपूर ख्याल, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, और अगर है किसी से नाराजगी तो जी उसे भी करें खत्म, क्योंकि नाराज रहना अच्छा नहीं लगता। और मैं तो कहती हूँ मुझे समझ नहीं आता कि लोग नाराज रह के सो कैसे जाते हैं। तो कभी भी किसी से अगर नाराजगी हो या अख्तिलाफात हों तो कोशिश करें कि उसे एज सून एज पॉसिबल हल कर लें, क्योंकि लड़े झगड़े मूड में ना तो कोई काम अच्छे से होता है ना तो कुछ होता है। चाहे वो आपके कोलीग्स हैं, वो आपकी फैमिली है, वो आपके फ्रेंड्स हैं, किसी से भी अगर आपकी नाराजगी है तो उससे एज सून एज पॉसिबल सॉर्ट आउट करें। और उसी के साथ साथ आप दीजिए हमें इजाजत, क्योंकि मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह कल फिर सेम प्लेस सेम टाइम। अल्लाह हाफिज एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।

0: FM 100's time check. It's 2 p.m.
1: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
2: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेनेटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोबराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से ज्यादा बच्चों का इलाज किया गया है इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय शौकत खानम कराची की तकलीफ Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
3: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
4: ہماری ذمہ داری ہے خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا ایف ایم 100 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز السلام علیکم پاکستان السلام علیکم پاکستان پاکستان
5: Across the nation, there is only 100 FM.

0: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: माहराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय शौकत खानम कराची की
2: तकलीफ. अभी राजा उस्ताद आ जाएगा, फिर मुझे कमरे में ले जाकर गलत तरीके से हाथ लगाएगा और किसी को बताने से भी मना करेगा.
3: हमारे माशरे में जिनसी बदसलूकी के वाकयात सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होते, बल्कि लड़के भी इसका शिकार होते हैं. लड़के और लड़कियों दोनों की हिफाजत का ख्याल रखें, दोनों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया. अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाए. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पे कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
4: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
5: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें. डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है. This public service message is brought to you by FM 100. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
6: FM247365.
7: Across the nation, there is only 100 FM.

0: in setting up real cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
1: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेनेटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोबराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से जायद बच्चों का इलाज किया गया है इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध
2: का वीकली लकी ड्रॉ विनर कराची से जीती है मुनव्वर फातिमा डायसन अब आप भी हर हफ्ते कार ईवी बाइक गोल्ड कॉइंस और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय शौकत खानम कराची की तकलीफ FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.
4: Across the nation, there is only 100 FM.

Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimabad.

0: जो है, चाहे वो कुछ भी हो, बर्ड्स हो, वो डॉग हो, वो कैट हो, कोई भी जानदार जो आप जिसके जो आपके पास है, अगर उसके उसके मतलब उसने अपना फेस तक नहीं देखा हुआ कि वो कैसा दिखता है, तो ये बहुत बड़ी हम पे ब्लेसिंग है कि हम अपने आप को देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, और यही फीलिंग हमारे लिए नेमत है.
1: कड़ाके की तकलीफ. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

जी जनाब, और बातें हो रही हैं और फिर जो है कुछ एक जबरदस्त सा ब्लास्टर सा चेंज के बाद फिर हमने कहा चलो दोबारा से वहीं आ जाना चाहिए जो आपकी अपनी अपनी टोन है, अपना आपका बैकग्राउंड है, और फिर हम आ गए. लेकिन कोई नहीं, बहुत अच्छा होता है, बहुत चेंजेस जो है वो अच्छे लगते हैं, कानों को भी अच्छे लगते हैं, जहन को भी अच्छे लगते हैं, आंखों को भी अच्छे लगते हैं, और होने चाहिए, पॉजिटिव चेंजेस जरूर होने चाहिए. आज बात हो रही है बड़े ही खूबसूरत रिश्ते की, वो है पेट. यार मतलब कि पेट, पेट अगर आपने पाल लिया ना, मैं आपको गारंटी करती हूं, आपने ये मजा अगर चख लिया ना, आप बर्ड्स हो, कैट हो, डॉग हो, इवन लोग ईगल्स तक पालते हैं, उनको तक पेट रखते हैं, ट्रेनिंग देते हैं. और अमारात में तो बाकायदा इसकी जॉब होती है, जो गल्फ कंट्रीज होती हैं उनमें तो इसकी जॉब होती है कि ईगल को ट्रेनिंग दी जाती है. तो आपके पास कौन सा पेट है, आप उसको किस तरह से ट्रेन करते हैं, करते भी हैं कि नहीं करते हैं, कभी सोचा भी है कि नहीं सोचा है? और जब आपका बच्चा किसी पेट को देख के उसकी तरफ जाता है तो आप क्या कहते हैं, नहीं नहीं हाथ नहीं लगाना, टच नहीं करना, वो ये खुदारा, प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज अपने बच्चों को ना आदत डालें कि वो पेट ट्रेंडी हो, उनमें इंसानियत का जज्बा आए, वो थोड़ा सा लविंग हो, केयरिंग हो. वरना जो बाहर बच्चे मार रहे होते हैं स्ट्रीट डॉग को, स्ट्रीट कैट को, वहां आप मना नहीं करते कि प्लीज जाने हैं, मत मारो उनको. तो ये चीज ना एक बड़ी देखने वाली है कि अगर आप पेट लवर नहीं है खुद तो बच्चों को मत रोकें. अगर आपका बच्चा है तो मुझे बहुत ज्यादा अजीब सा अनोइंग लगता है कि जो जिन्होंने खुद अपने बच्चे सही तरह पाले नहीं होते वो बच्चों को पेट तक को हाथ लगाने मना कर रहे होते हैं. हाथ नहीं लगाना, दूर से देखो, क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं आप? थोड़ा सा उसको उस पर ट्रस्ट करें, थोड़ा सा उन पर ट्रस्ट करें जो पेट पेरेंट्स हैं. तो हाँ, ये होता है कि पेट एग्रेसिव होता है, किसी को देखकर एकदम से कुछ ना कर ले, लेकिन स्टिल आपके बच्चे से तो वो डर, वो खौफ निकलेगा, मोहब्बत का वो जज्बा तो उसके आगे बढ़ेगा.

जी जनाब, और आज बात हो रही है पेट्स की, पपी की, कैट की, बर्ड्स की। और आप यकीन करें कि आज जब मैं शो में आ रही थी तो मैंने ये सोचा हुआ था कि कुछ चीजें जो न्यू पेरेंट्स ऑफ पेट होते हैं, न्यू पेरेंट्स होते हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया होता है, जिन्होंने बाय किया होता है, परचेज किया होता है, उनके लिए जो रखना भी चाह रहे होते हैं, जो नहीं भी रखना चाह रहे होते हैं, कहते हैं यार नहीं घर की वजह से, या ऑब्वियसली ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, या बहुत सारे विशेज आप अपनी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते तो उसकी वजह से। लेकिन अगर आपने रखना है तो प्लीज उसके मील का ख्याल करें, हाई क्वालिटी हाई एंड चीजें दिया करें। बहुत छोटी सी नन्ही सी जान होते हैं जिनकी जिम्मेदारी आपने ली होती है, थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके अच्छी क्वालिटी की अच्छी प्रोडक्ट लेने में कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा आप उनको जो आप पानी कंटेक उनका बड़ा रखा करें, उसकी वजह यह, हम इंसान है, नॉर्मल है।

0: setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
1: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेनेटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोपराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से ज़ायद बच्चों का इलाज किया गया है इन अस्पतालों में 262 इनक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव

0: सर्जरी यूनिट, रिहैबिलिटेशन यूनिट, न्यूरोलॉजी और जनरल वार्ड कायम किए गए हैं।
1: बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध।
2: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर कल रांची से जीती है मुनव्वर फातिमा डायसन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
4: FM 247 365 FM 247 365

0: FM 100's time check. It's 4 p.m.
1: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
2: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेनेटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोपराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से ज़ायद बच्चों का इलाज किया गया है। इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं। बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध।
0: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365 FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
3: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान।

0: in setting up free-of-cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
1: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेनेटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोपराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से ज़ायद बच्चों का इलाज किया गया है। इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं। बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: FM247365

0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
1: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजे या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखे। मजीद मालूम के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
3: शौकत खानम कराची की तकदीर।
4: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।

0: झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली।
1: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
2: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
1: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
2: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
1: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
3: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
4: शराइत और ज़वाबित लागू है।
5: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL, फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: एंड सर सब नाइट्रो फॉर्स को लगा और जीत ताजा।
7: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
8: एंड ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
9: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
10: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
11: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
12: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey. This is

0: your location for maximum music.
1: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
3: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
4: 100 FM.
5: ओ झूमे प्यार से हर वक्त डली डली.
6: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है.
7: खैर ही खैर है. HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है.
6: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
7: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला.
6: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
8: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज. मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से राब्ता करें.
9: शराइत और ज़वाबित लागू है.
4: 100 FM.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
1: This program is brought to you by HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
10: And सर सब नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा.
11: And फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
12: And try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
1: On facebook.com/fm247365.

0: in setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
1: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेनेटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोबराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से ज्यादा बच्चों का इलाज किया गया है। इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं। बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध।
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
4: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डाली डाली,
5: ओ खैर है बरकते बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
6: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
5: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
6: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
5: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
7: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
8: शराइत ज़वाबत लागू है।
9: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर, कल रांची से जीती है मुनव्वर फातिमा डायसन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खास

0: वहां HBL।
1: सर सर नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सर पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।

0: This program is brought to you by HBL Freedom Account. जहां ख्वाब वहां HBL.
1: And सर सब नाइट्रो फॉल्स को लगा और जीत ताजा.
2: And फिनिक्स लगा और भूल जा. फिनिक्स लगा और भूल जा.
3: And try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
4: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: This program is brought to you by HBL Freedom Account. जहाँ ख्वाब वहाँ HBL.
1: And सर सब नाइट्रो फॉर्स को लगा और जीत ताजा.
2: And Phoenix लगा और भूल जा. Phoenix लगा और भूल जा.
3: And try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
4: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
5: FM247365.
6: FM 100.
7: 31 साल. FM 100. आपकी आवाज. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
8: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.
9: इवनिंग ड्राइव टाइम विद डीजे.

0: is only 100 FM.
1: The station for the nation.

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट
3: 100 FM.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
0: This program is brought to you by
1: HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
4: And sir sab nitro force ko laga aur jeet ta ja.
5: And phoenix laga aur bhul ja, phoenix laga aur bhul ja.
0: And
6: try all new vatika shampoo, nourishes hair naturally.
7: FM 100, like us on facebook.com/fm247365.
8: fm247365. Evening Drive Time with

0: in setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
1: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेनेटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोपराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से ज़ायद बच्चों का इलाज किया गया है इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध
2: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account जहां ख्वाब वहां HBL
3: वाजिदा वीकली लकी ड्रॉ विनर कराची से जीती है मुनव्वर फातिमा डायसन अब आप भी हर हफ्ते कार ईवी बाइक गोल्ड कॉइंस और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली
4: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली
5: ओ खैर है बरकते बड़ा झूम झूम के गा रहा है
4: खैर ही खैर है HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है
5: HBL ज़रई बैंक की वजह से
4: हाँ बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला
5: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा
6: जी हाँ पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म फिश फार्म ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें
7: शराइत ज़वाबित लागू है
8: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम
2: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account जहां ख्वाब वहां HBL
9: शौकत खानम लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन
10: शौकत खानम कराची की तकदीर
11: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
12: 100 FM
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट
13: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा 3 की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट
14: किसने कहा

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफाद आमा के लिए वजारत इत्तिलात व नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295 बी के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिल सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: FM.
3: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: FM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL. This program was brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: And Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
2: And Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: And try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
0: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
4: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
5: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
6: शौकत खानम कराची की तकदीर.
7: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
8: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर, कराची से जीती है मुनव्वर फातिमा डायसन. अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं. बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम. पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें. ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली.
9: ओ झूमे प्यार से हर वक्त डाली डाली.
10: ओ खैर है, बरकते बड़ा झूम झूम के गा रहा है.
11: खैर ही खैर है. HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है.
10: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
11: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला.
10: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
12: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज. मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से राब्ता करें.
13: शराइत ज़वाबत लागू है.

0: बैंकिंग अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तन बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर कल रांची से जीती है मुनव्वर फातिमा डायसन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरो इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
3: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
4: शौकत खानम कराची की तकदीर।
5: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
6: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
7: झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली,
8: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
9: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
8: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
9: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
8: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
10: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से राब्ता करें।
11: शराइत ज़वाबत लागू है।
12: किसने कहा था पैसे?

0: It's 7:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
1: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
2: Shaukat Khanum, Karachi ki takdeer.
3: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanum.org.pk विजिट करें।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: 100 FM.
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट
4: 100 FM.
5: ओ झूमे प्यार से हर वक्त डली डली,
6: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
7: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
6: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
7: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
6: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
8: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और शियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
9: शराइत ज़वाबित लागू है।
10: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
11: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
12: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे न लगाएं।
11: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
13: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
14: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
11: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ही कम हुई।
13: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
14: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
13: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
11: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
14: और इस वजन की असल हकीकत को समझिए।
11: आइए वेट से आगे का सोचें।
10: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
15: ईमेल हर अदारे के लिए एक इंतहाई अहम जराए इब्लाग है, लेकिन सिर्फ एक गलत क्लिक पूरे नेटवर्क को खतरे में डाल सकता है। साइबर मुजरिमों की जानिब से हुकूमती और निजी शोबे के मुलाजमीन को मुसलसल फिशिंग ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इनका क्या मकसद है? आपकी लॉगिन तफसीलात चोरी करना, सिस्टम्स को रैंसम वेयर से मुतासिर करना या गैर मजाज रसाई। महफूज रहने के लिए हमेशा ये बेहतरीन तरीके अपनाएं। हमेशा भेजने वाले की शनाख्त चेक करें, खसूसन एड्रेस। हमेशा अटैचमेंट की फाइल एक्सटेंशन चेक करें। PTA.txt महफूज है, लेकिन PTA.txt.exe नुकसानदेह साबित हो सकती है। अटैचमेंट खोलने से पहले जरूर स्कैन करें। ईमेल इस्तेमाल करने के बाद हमेशा लॉग आउट या साइन आउट करें।

Mr. Bombay!

हेलो माइक 1 2 3 अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, सभी सुनने वालों को अयाज अहमद की जानिब से आदाब। क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं? और थोड़ी देर पहले क्रिसेला जी यहां मौजूद, जबरदस्त शो करके गई हैं वो। अच्छा जनाब, मुलाकात होती है आपसे 9 to 11, और आज है ट्यूसडे, और ट्यूसडे वाले दिन जनाब क्यू शीट जरा नए गानों, पुराने भी हैं तो वो भी रिमिक्स, और मैसेजेस आप लोग मुझे करते हैं बहुत ही प्यार से। KHR स्पेस टेक्स करेंगे, सेंड कर देंगे 3636 पर। तो जनाब ड्राइव करते हैं, सुकून इत्मीनान हमेशा मैं कहता रहता हूं। उम्मीद करता हूं मेरी बात सुनते भी हैं या एक कान से सुन के दूसरे से उड़ा देते हैं। अक्सर होता है ना, सुना और बस। कोशिश करें यार इत्मीनान से, सुकून से ड्राइव करें आप, और इसके अलावा जो घर में मौजूद है लोग वो भी सुकून से और इत्मीनान से रहें। अच्छा जनाब, आगाज करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक से, और वो है कैसे, हाय हाय उस्ताद जी, उस्ताद नुसरत फतेह अली।

0: जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं एफएम 100 और साथ ही साथ मैसेजेस पहुंचना भी शुरू हो गए 3636 पर। और बिलावल भाई ने सबसे पहले मैसेज कर दिया गिजरी से। अयाज भाई सलाम, सुमल जी और कादिर भाई और तमाम प्यारे लिसनर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप फिट फाट होंगे, मजे में होंगे, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और इसके अलावा एंजेलिना आ गई, एंजेलिना क्या हाल है आपके? किंग अयाज आपको सलाम, बिलावल, नौरीन, जरीन और सारे लिसनर्स को सलाम। क्या हाल है, कैसे मिजाज है अंजलिया जी? मेरे मिजाज बिल्कुल ठीक, आप अपने बतलाइए कैसी तबीयत है। अच्छा जनाब, और इसके अलावा हमेशा की तरह प्यार से संजीदा जी भी आ गई हैं और सलाम अलैकुम भी कह रही हैं, वेलकम भी कह रही हैं। वालेकुम सलाम संजीदा, क्या हाल है? और पहला गाना ही पसंद आ गया भैया। चले जनाब, मूड तब्दील होते रहते हैं, आज भी कुछ ऐसे सिलसिला है, स्लो गाने भी हैं, फास्ट भी हैं, तो बिल्कुल मिक्स माहौल है फुल टाइम। अच्छा जनाब, दो मिनट की ब्रेक नजर आ रही है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय शौकत खानम, कराची की तकदीर।
2: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी, एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
3: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और एफएम 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए, कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा, फैसला आपके हाथ में है।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
1: Us on facebook.com/FM247365.
5: FM247365.
6: Active, yummy,
7: adorable, 7.

में जनाब वेलकम बैक सुन रहे हैं FM 100 और साथ ही साथ मैसेजेस भी प्यार से मोहब्बतों से आना शुरू हो गया। मिसेस फारूक क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम और इतनी सारी दुआएं देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब अब जरा नेक्स्ट ट्रैक की जाने नजम शिराज याद आ जाते हैं इस ट्रैक को सुन के। वैसे नजम शिराज ने तो नहीं गाया लेकिन उनके गाने को लेकर जरा सा रीडू रीमेक कुछ भी कह सकते हैं आप वो किया गया लेकिन बहुत ही अच्छा।

हाय जनाब, वेलकम बैक सुन रहे हैं FM 100 और साथ ही साथ इतने प्यार से मोहब्बत से मैसेज करने का बहुत शुक्रिया। मुश्क लैला आ गई हैं और फेसबुक पे कहनी अस्सलाम वालेकुम किंग, क्या हाल है? आज स्टार्ट से ही सुन रही हूँ। वाह वाह, क्या बात है, ऐसा लग रहा है मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई है लेकिन आप सुन रही है। मुश्क लैला जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, गले में भी ना थोड़ी सी माहौल है ये। अच्छा भाई, फैसलाबाद से नौरीन तौसीफ भी आ गई। नौरीन जी, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और बेहतरीन शो का आगाज इख्तिताम भी लाजवाब होगा इंशाल्लाह जनाब, इंशाल्लाह। और आप लोग आ गए हैं तो अब तो बिल्कुल ऐसे ही। और इसके अलावा संजू बहना, तानिया, जरी, मुश्क और अयूब लाला सबको सलाम कह दिया है। इंजीन को भी सलाम, ढेर सलाम थी। चलिए जनाब, वालेकुम सलाम। और इसके साथ साथ हुमा भी आ गई। हुमा जी, कैसी हैं आप? ठीक है, मजे में है। इनसे नैन बिल्कुल नजम शिराज का, और ये इसकी वीडियो मुझे बड़ी पसंद थी, मैं उसको देखता था, हर वक्त भाग ही रहा है वो, कहीं रुक ही नहीं रहा। भाई रुक जा यार, पता नहीं क्या कौन पीछे लगा हुआ था, इतने भागे हैं नजम शिराज भाई, कमाल। लेकिन जरा ये नए स्टाइल से। और इमरान भाई, भागने की बात की तो इमरान भाई तशरीफ ले आए, वाह वाह वाह, गर्मा गर्म चाय। और इमरान भाई के हाथों में ना मजा है कुछ। अच्छा जनाब, इसके अलावा कह रहे हैं कि अच्छा जनाब, इसके अलावा जनाब संजीदा जी बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, गाना ये भी पसंद आ गया। इसके अलावा 90s की याद दिला दी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मिसेस फारूक को जो है वो 90s की याद आ रही है और गाना इनको भी पसंद आ गया। अच्छा कुछ रिमिक्सेस मैंने रखे हुए हैं तो सोच रहा हूँ जरा साथ साथ ही प्ले करूं। जरा ये वाला रिमिक्स चेक करें आप।

वाह जनाब, वेलकम बैक सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ जनाब कमची की, कमची है ना, कमची ना होना, उसकी जरा रेसिपीज भी लोग बता रहे हैं। बड़ी मेहरबानी सरकार, कह रहे भाई सब्जियों से और आमतौर पर नमक मसालों में खमीर की हुई है। अच्छा जी, चले सब्जी पता नहीं क्या होती है, बहरहाल कुछ मजे की होती होगी। नादिया हम कहेंगे नादिया जरा रेसिपी आप भी बता दें, मुझे रिकॉर्ड करके अच्छे से रेसिपी बता दो। एंजेलिना कह रही है आज सॉन्ग्स मजेदार प्ले हो रहे हैं। मैं एंजेलिना जी आज यही मॉल है। और इसके अलावा अयूब आफरीदी कह रहे हैं याद भाई अपनी पसंद का कोई भी सॉन्ग, सबा गुल, मुश्क और महनूर, हिना गुल और सब उन्हें शहर मानो को। एक बंदा भी गुल अपना अयूब भाई, एक बंदे का जिक्र तो कर लेते हैं, सारी औरतें मैंने मतलब लड़कियां का नाम रखा है छाए हुए हैं अयूब भाई। अच्छा जी, बिलावल कह रहे हैं सर आउट क्लास सॉन्ग प्ले हो रहे हैं भाई, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी सरकार, प्यार है आपका। अच्छा मैं पूरा कोशिश करता हूं हर तरह के लोगों का जो है ना उनके पसंद के गाने हों हर शो में, तो जरा माहौल जरा फास्ट गानों का बना हुआ है, तो लीजिए जनाब एक और चेक करो भैया।

0: やめ。
1: अरे जनाब वेलकम बैक सुन रहे हैं एफएम 100 और क्या भाई जबरदस्त एनर्जी आ जाती है और खास तौर पे मैं तो कह रहा हूँ जिम शिम में बंदा जाए तो इस तरह का म्यूजिक हो वेट लिफ्टिंग जरा ज्यादा ही हो जाएगी डोले छोले जरा ज्यादा बन जाए। अच्छा वैसे म्यूजिक का होता है असर अक्सर मैं सोचता था यार ये क्यों म्यूजिक इतना फास्ट लगा रहे होते हैं इस वाली जगह पे लेकिन अब अंदाजा होता है वाकई यार एनर्जी आ जाती थोड़ी सी। अच्छा जी हुमा जी क्या कह रही है हुमा कह रही है अयाज बैकग्राउंड सुनो तो गोविंदा का डांस याद आ। अच्छा जी और मेरा पिया घर आया माधुरी हाँ यार इन्होंने वैसे इंडिया वालों ने बड़े नुसरत फतेह अली साहब के गाने जो कवालियां हैं इनको बड़ा यूज किया। तो बहरहाल जनाब और कह रही मेरा फेवरेट है चले जनाब आज आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ सारे अच्छे अच्छे फेवरेट गाने सुनूं और हुमा जी थोड़े जरा स्लो ट्रैक्स भी सुनती है तो फिर जरा ख्याल रखते हैं स्लो जो गाने सुनते हैं उनको भी ये गाना मैं डेडिकेट करता हूँ और आतिफ असलम के जो फैन है उनको भी ये गाना मैं डेडिकेट करता हूँ। क्या ही बात है इस ट्रैक की

0: but you can use the sabzi of your choice. तो मेरे पास broccoli पड़ी थी, broccoli और गाजरें थी और जो भी कुछ सब्जी मेरे फ्रिज में थी, मैं समझ में नहीं आया था मैं उसका क्या करूं. तो उसमें आपने इसको पहले ब्लांच करना है, ब्लांच मतलब किसको आपने धोना है ठंडे और गर्म पानी से, एंड फिर आपने इसको नमक डाल के जो है वो दो तीन घंटे के लिए छोड़ देना है, ठीक है. और फिर उसके बाद आप इसको पानी को छान लें और फिर इस सब्जी के बीच में आपने अलग से चावल का जो आटा होता है जिसको कि आई डोंट नो कुछ होता था इसको उर्दू का नाम, क्या कहते थे इसको, एनीवे जो स्टार्च होती है ना, तो जो चावलों का आटा होता है उसकी अपने पानी के साथ करके उसकी थोड़ी सी वो अपने बना लेना, ऐसे वो ग्लू के जैसा बन जाएगा. और रेसिपी बहुत लंबी हो गई है यार, बट आई एम गोइंग टू फिनिश दिस ऑफ. ये आपने डालना, फिर बीच में कुछ इसकी मसाले वगैरह होते हैं, अगर आपके पास वो नहीं है तो यू कैन हैव अ लाल वाली जो मोटी दरदरी मिर्च होती है, जो चिली फ्लेक्स होते हैं वो, उसके साथ कश्मीरी मिर्च. और आपने फिश सॉस डालें, और मैं तो कहूंगी कि आपके किचन में जो जो अवेलेबल है ना, कुछ खरीदने जाने की जरूरत नहीं, और जो चीजें बहुत अच्छे से यूज नहीं वो डालें, और ब्राउन शुगर डालें, और डाल के साथ कुछ आप इसको डब्बे में बंद करके रख दें, यानी आपको बहुत मजे का एक अचार बन जाएगा, विच इज वेरी हेल्थी फॉर योर गट, और वैसे भी मजे का होता है.
1: राइट जनाब, और ये बनाते ही आपने वॉशरूम चले जाना है, क्योंकि काफी पुरानी चीजें जब आप चीजों में डाल देते हैं तो मसला हो जाता है पेट का. लेकिन मेरा बहुत अच्छी रेसिपी नादिया मलिक, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया. इतनी तवील रेसिपी जो है यही बता सकती है, मैं तो नहीं बता सकता. और अब आप जब पाकिस्तान आएंगे ना, तो आपको मैंने खास तौर पर यहां बुलाना है, और जो कोई कुकिंग का शो या कोई शेफ जो है ना, एज ए शेफ मस्ट हमारे शो में आपने आना है. वैसे नो डाउट यार, इनके बनाए हुए खाने बड़े खूबसूरत, तस्वीरें भेजती हैं ये, तो वाकई दिल करता है. और एक खाने की मैं आपको एक बात बताऊं, जो दिखने में खाना अच्छा लग रहा होता है ना, वाकई टेस्टी होता है. तो बैल जनाब, थैंक यू जनाब, थैंक यू. अयूब आफरीदी, अयाज भाई, शो बहुत अच्छा है, सॉन्ग्स भी अच्छे हैं, बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया. अच्छा जनाब, सीमा बाबर भी आ गई. सीमा कैसी हैं आप, ठीक हैं? और कहनी भाई, कुकिंग कर रही हूँ इसलिए लेट हो, कोई ऐसी बात नहीं, मैं आज तो हमारा शो भी कुकिंग वाला ही लग रहा है फुल टाइम. अच्छा जी, हुमा सिद्दीकी यानी एबा का डांसिंग क्विंग रीमिक्स में है, रीमिक्स में तो नहीं वैसे ओरिजिनली वाला, थोड़ी देर जरा सा इंतजार करें, ये जरा एक आध गाना प्ले कर लूं, और उसके बाद एबा भी क्या ग्रुप था यार, बहुत जबरदस्त. अच्छा जनाब, ये ट्रैक सुने जरा, हाय हाय, मुझे आजकल अच्छा लग गया ये गाना.

ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस भी पहुंच रहे हैं और मेरी प्यारी सी चाची भी आ गई। चाची कैसे मिजाज है आपके? ठीक है। और चाची इतने मजे मजे के खाने बनाती हैं, वाह वाह वाह वाह वाह। जर्द जैसे एक बात है, जर्दे की जो बात आपने की ना, ओए होए होए होए, क्या तस्वीर भेजी भाई। खोया भी है, बादाम भी है, मिठाइयां भी ऊपर छोटी छोटी जो होती है ना, चमचम वगैरह, गुलाब जामुन भी छोटे वाले नहीं होते। हाँ हाँ, फुल टाइम जो है ना चाची, ज्यादा नहीं खाना, शुगर ना हो जाए, कम कम खाए मीठा जरा, लेकिन जरा देखभाल के। फिर एक्सरसाइज तो खैर आंटी करती है, चाची हमारी बड़ी शौक से एक्सरसाइज करती है। अयूब आफरीदी कह रहे हैं यार भाई सॉन्ग अच्छा, ये तो मैंने पढ़ लिया। एंजेलिना कह रही है बिलावल, नौरीन और जरी को अच्छा सा सॉन्ग डेडिकेट करना, ठीक हो गया। एक अजीज ने भाई ए वाई ए जेड, फैसल भाई ए वाई ए जेड, अयाज मेरा नाम है, अजीज नहीं है, ए जेड आई जेड क्या लिखा है ये नहीं है, ए वाई ए जेड अयाज। सलाम, शो सुपर से बहुत ऊपर जा रहा है, सरकार पकड़ लेंगे यहां से ना उड़ जाए वो, सॉन्ग बेस्ट है। फैसल भाई बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी फैसल भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, डांसिंग क्वीन एबा शामिल करते हैं और उसके बाद छोटी सी ब्रेक। मैसेज करते हैं 3636 पर।

जना वेलकम बैक टू एफएम 100 और साथ साथ मैसेजेस भी पहुंच रहे हैं। रमजान पठान कह रहे हैं आज भाई पश्तो सॉन्ग प्ले करने। अच्छा सरकार में से थोड़ा सा इंतजार, एक दो गाने प्ले कर लूं उसके बाद मैं पश्तो गाना आपके लिए स्पेशली प्ले करता हूं। अच्छा जी चाची इतने मजे मजे के खाने जो है ना वो जरा उनकी पिक्चर बना के भेजनी, क्या बात है चाची बहुत जबरदस्त। अच्छा जनाब और आपको क्या पसंद है, कौन सी डिश? अच्छा सीमा बाबर पूछिए, बस कुछ मजे का हो कुछ भी खा लेता हूं मैं। कुछ लोग ना खाने के शौकीन होते हैं बहुत, मैं उस तरह का नहीं हूं, बस कुछ मजे का होना चाहिए। अच्छा जनाब चाची को सलाम भेज दिया किसने, यूके से नादिया मलिक ने, मुतंजन हुई बड़ा मुश्किल नाम है, बाकी सही कह रही है। चले जी जनाब जब आप पाकिस्तान आएंगे तो जरूर उनके लिए बनाइएगा। अच्छा भाई अब जरा नेक्स्ट ट्रैक की जाने बढ़ते हैं और वो है कैसे,

0: में जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं एफएम 100। सलीम मेमन भी आ गए। सलीम भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? चाची को मेरा खास सलाम और मेरी तरफ से उनके लिए ढेरों दुआएं। चलें जनाब, चाची आपके लिए बहुत सारी दुआएं भी आ गई हैं। और इसके अलावा ओए होए क्या बात है जनाब, गाने पसंद आ रहे हैं मिसेस फारूक को। वाह वाह क्या बात। और चाची मैंने बिल्कुल पढ़ लिया भाई, मैं क्या कह सकता हूँ ऑन एयर, जरा ये बात मैं कह नहीं सकता, लेकिन वाकई ऐसे लोग हम पे मुसलत कर दिए गए, इसमें कोई शक की बात नहीं। पाकिस्तान के लिए दुआएं कि अच्छे लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए और इस मुल्क के जो मसाइल हैं वो हल हो सके। ऐसे लोग होंगे तो वाकई सही कह रहे हैं, कहां जो है वो मसाइल का हल होगा। थैंक्स अयाज, रिक्वेस्ट प्ले की। अरे बड़ी मेहरबानी हुमा जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे पास क्यू शीट में था ये गाना, तो मैंने ये आपके लिए प्ले कर दिया। चलिए थैंक यू अयाज, आप मैसेज शो में शामिल कर रहे हैं। अच्छा जनाब, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, आप बताएं, मोस्ट वेलकम। और अरे भाई उरूसा भी आ गई है यार, कह रही है सलाम किंग सॉन्ग देयर इज कमाल। बड़ी मेहरबानी उरूसा, कहां गायब है आप? बड़े दिनों बाद उरूसा का भी जो है वो मैसेज हमें नजर आया है। और जब से फोन कॉल का सिलसिला बंद हुआ है, सीरियसली वैसे मैं आप लोगों को बहुत याद करता हूँ, तो जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि जरा फोन जरा सही हो और फिर आप लोगों से बातचीत भी हो सके। अच्छा जनाब, एक मिनट की ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय शौकत खानम, कराची की तकलीफ।
2: क्या कम उम्र बच्चियों से मुशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र उनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की? उन पर काम का बोझ ना डाले, उनसे उनका बचपन ना छीने। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। बच्चों से मशक्कत लेना एक काबिले सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मशक्कत से इनकार करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
3: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम।

जना वेलकम बैक, सुन रहे हैं एफएम 100। और रूसा कह रही इतने दिनों बाद नो लिफ्ट, लिफ्ट ही लिफ्ट है, पूरी लिफ्ट हमने आपकी नजर कर दी भाई, और इतने दिनों बाद मैसेज करोगी तो थोड़ा सा जरा मसला तो होता है, लेकिन बहरहाल लिफ्ट ही लिफ्ट है भाई। और इसके अलावा सीमा बाबर क्या कह रही, कोई सॉन्ग हमें भी डेडिकेट, सारे गाने सीमा बाबर आपके लिए। एंजेलिना किंग कह रही मेरी डेडिकेशन भूल गए, हाय किसको करनी थी डेडिकेशन, एंजेलिना की तरफ से जिन जिनको इन्होंने कहा है ना डेडिकेट के लिए, तो ये गाना उनके लिए लीजिए।

राइट जनाब, वेलकम बैक सुन रहे एफएम 100 और एम अतीक आ गए भाई, अयाज भाई अगर हो सके तो नाजिया हसन का कोई सॉन्ग यार, क्यू शीट बनी हुई है तो चलो वादा नहीं करता, देखता हूँ क्योंकि मेरी भी बड़ी फेवरेट है नाजिया हसन। चाची इतने मजे मजे के खाने आप जो है ना तस्वीरें भेज रही है ना, बस मैं देख देख के खुश हो रहा हूँ। आई सो स्वीट, चाची खुश रहे आप, चाची बहुत स्वीट है यार। चाची की कमी हम महसूस कर रहे थे बीच में, मैं आपको बता दूं, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है वही टेम्पो दोबारा हो गया। उर्विशा जी को भी सलाम, काफी अरसे के बाद इनके SMS आए। बिल्कुल देखें सलीम अहमद भी याद कर रहे हैं, उर्विशा कहां गायब हो गई थी आप, इतने सारे पुराने पुराने जो है लिसनर्स जो वापस आ रहे हैं तो जरा अच्छा लग रहा है। और भी बहुत सारे मैसेज पहुंच गए, सीमा बाबर के मुस्तकिल मैसेज आ रहे हैं और कोई सॉन्ग मैंने बिल्कुल जनाब सारे गाने आपके लिए, आपका प्ले कोई ऑन एयर आ रहा है अभी, प्ले तो नहीं, एक अलबत्ता मैं आपको थोड़े से दिनों में बताता हूँ, एक शो है उसकी तैयारी हो रही है, उसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, एक नया चैनल है न्यूज का उधर से आने का प्लान हो रहा है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, जैसी कंफर्म होती है चीजें मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जनाब, ओए होए, मैं तो समझा संजू जो है वो ये जो चिमची है जो भी है किमची इसको बनाने चली गई है, आई नहीं रही जी। और चाची को सलाम कह रही है संजू जी, चाची को सलाम कह रही हूँ, चाची की जाने से मैं कह रहा हूँ वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जनाब, और इसके अलावा उरुसा क्या कह रही है, इंशाल्लाह चाची आंटी मिस्टर फारूक को लव भी और सलाम भी सब दे दिया है उरुसा ने। सॉन्ग्स कहाँ से ले आया आज, बस मैं ले आता हूँ, आप फिक्र ना करें, आप कोशिश हमारी होती है नए पुराने सारे गाने जो है ना मिक्स करके मैं आपको सुना दूं। अच्छा अभी पश्तो गाने की रिक्वेस्ट आई भी थी और पश्तो गाना फिर रहीम शाह मुझे याद आ जाते हैं, और इनका खास तौर पर ये गाना मेरे को समझ में नहीं आता कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन कमाल गाना यार, क्या म्यूजिक है। तो जिसने पश्तून बिरादरी, जिसने पख्तून भाई मेरे सुन रहे हैं, रमजान पठान सुन रहे हो,

है जनाब, सुन रहे हैं एफएम 100 सॉन्ग्स आप पसंद कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी सरकार, बड़ी मेहरबानी। तो सॉन्ग्स की बात हो ही रही, तो एक और ट्रैक मैं आपको सुनाता हूँ, कमाल गाना ये भी।

क्या बात है जनाब, गयासुद्दीन बलबन आ गए हैं मुल्तान से, लेट आए गयास, ट्रेन लेट हो गई। अस्सलाम वालेकुम, आपको और पूरी टीम को सलाम। नाइस प्लेयर, थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। हाय हाय,

0: क्या कहने। अच्छा जनाब, बिलावल कह रहे हैं रूसा सिस्टर और गयास भाई को सलाम। वालेकुम सलाम उनकी जानिब से। और गयास कह रहे हैं सराफा बाजार सोने चांदी के बाजार था। अच्छा जी, मुल्तान का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा जनाब, सॉन्ग्स मैं आपको सुना रहा हूँ और इसके साथ साथ एक और ट्रैक मुझे याद आ गया है और थोड़ा ये पंजाबी में इसको भी शामिल करते हैं। अच्छा, साथ साथ मैसेजेस किए चार स्पेस
1: राइटिंग अ सॉन्ग,
0: टेक्स्ट करेंगे, सेंड करेंगे 3636 पर।
1: जस्ट गिव इट अ लिसन वंस, ओके।

मेहरबान जनाब, वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 माय हीरो अयाज भाई, कैसे हो आप लोग? ड्रामा मूवी देखकर खुद को रियल लैला मजनू क्यों समझते? चलो कोई नहीं यार, पल भर की खुशी है, समझने दो, कम से कम एक आदमी अपने आप को तो समझ रहा है, लैला या मजनू जो भी, इसमें कोई मजाक भाई, कौन है जिसने नाम लिखा आपने भाई, कम से कम एक आदमी तो समझे अपने आप को, मजनू समझ लो, चलो कोई नहीं। अच्छा, मैंने रियल मजनू और लैला की तस्वीर किसी ने शेयर की थी।

लैला की तस्वीर किसी ने शेयर की थी, उस वक्त फेसबुक का दौर नहीं था ना, वरना एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो रिक्वेस्ट ही नहीं उसने एक्सेप्ट करनी थी। लेकिन मैं देख के हैरान हो गया, रियलिटी क्या है और ख्वाब और सपने वो क्या चीज होती है। आप सोच रखो ना, बड़े हसीन तरीन लोग होंगे, देखते ही बंदा कह रहा है नेक्स्ट। लेकिन बहरहाल उस दौर में यही गनीमत थी। अच्छा जनाब, तो नेक्स्ट ट्रैक की जाने बढ़ते हैं। नाजिया हसन का किसी ने जिक्र किया था, मैं जुहैब हसन को भी साथ लिया, दोनों बहन भाई मुझे बड़े अच्छे लगते हैं।

हाँ, क्या बात है जनाब। अच्छा, आजकल के बच्चों को ये वाले गाने पसंद आए। अच्छा, ऐसे लड़ रहा हो जो फुल टाइम किसी टाइम भी गाना गाते हुए को सामने आ जाए, दो घूसे पक्के। नहीं, स्टाइल है भाई ये भी। अच्छा, समझ कुछ नहीं आ रहा, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं। हाय हाय,

बिलाल सईद का जिक्र कर रहे हैं और सामने नजर आ रहे हैं नदीम अख्तर। वाह वाह वाह नदीम भाई, क्या हाल है? ठीक हो? अरे हाय, आवाज आ गई आपको यकीनन? अयाज आप तो मुझे याद ही नहीं करते, और मैं मालूम, अरे नहीं करो यार, नहीं करो ऐसा, क्यों नहीं याद करता मैं आपको? और आपका शो से शुरू किया, एक तो मुझे पढ़ने में इतना मुझे प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं क्या करूं, कोशिश कर रहा हूं मैं। लेकिन आपके लिए मैंने गाना एक रखा हुआ था, जो पर्शियन जो आप कहते हैं फारसी गाना, तो थोड़ा सा मैं आपको सुनाता हूं, क्योंकि टाइम जो है ना जरा खत्म हो रहा है, थोड़ा सा सुनाता हूं और उसके बाद टाटा बाय बाय करते। रुबाब जी आप

हाय हाय हाय, क्या डांस है नदीम भाई, वाह वाह वाह। बिलावल कह रहे हैं सर बेस्ट शो एंड गुड नाइट टाटा बाय बाय। और मिसेस फारूक बहुत शुक्रिया आपका, इतने मोहब्बत से प्यार से आप सुनती हैं, इतनी दुआएं देती हैं और कह रही हैं कि जबरदस्त शो। सीरियसली बताऊं आप लोगों का प्यार मोहब्बतें हैं आप लोगों। और मेरी चाची आज आई, थोड़ी दुखी भी हैं वो। चाची खुश रहा करें, जिंदगी इसी तरह चलती रहती है, गुजरती रहती है। और नदीम भाई भी आपको बहुत याद करते हैं, तो चाची दुआओं में याद रखें। इसके अलावा संजो जी क्या कह रही हैं, शुक्रन शहजादे, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अयाज अहमद को दें इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, रब रखा, खुदा पामाना।

0: आइटम नंबर, मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी, जो करना है करवा दे।
1: 100.1 FM, your location for maximum music.
2: Music Twister.
3: What's the music?

আসসালামু আলাইকুম, আসসালামু আলাইকুম পাকিস্তান। মেরা নাম নদীম আখতার আর প্যার সে আপ লোগ মুঝে কেতে হো এনে সোনো মিউজিক টুইস্টার মে মে হু আপকে সাথ আপকা আর মেরা সাথ হে জনাব 1 বজে তক আর 1 বজে তক করেঙ্গে খুব আল্লাহ তে গুল্লা वो भी ओल्डी गोल्डी क्लासिक का, यानी आज के प्रोग्राम में आप सुनेंगे पाकिस्तानी मूवीज के ट्रैक्स, पुराने और बहुत पुराने, यानी के तो जनाब शो में शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका है, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, के चाइल की स्पेस दीजिए, अपना प्यारा सा नाम, प्यारा सा मैसेज और उसको सेंड करेंगे 3636 पर। जो लोग इस वक्त कार ड्राइव कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी गाड़ी की हेडलाइट लो बीम पर रखें, ट्रैफिक सिग्नल के पास जारी करें, बहुत मेहरबानी होगी। कोई ना कोई सवाल फ्लोट करता हूं, आप देते हैं उसका जवाब। 3636 पर। लेकिन उससे पहले किया जाता है आप लोगों को वार्म अप, और वार्म अप करने के लिए चलता है गाना। तो पहला गाना एलो फड़ो जनाब, पहला गाना।

0: वेलकम बैक आएंगे सोनियो, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। भाई बहुत ही बढ़िया गाना, नाहिद अख्तर की आवाज। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। फीता गाटा है सबसे पहले यूसुफ भाई ने बाबूज से और तमाम सुनने वालों को, एफएम की तमाम फैमिली को उन्होंने सलाम कहा है। आंटी चाची अरूसा गुलबानों और तमाम डॉक्टर्स को उन्होंने और मेरे वालिद मोहतरम को, इमरान भाई, खिदाब लाला, सबको सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं यूसुफ भाई, तबीयत कैसी है आपकी? ड्यूटी पर हैं या ड्यूटी पर नहीं है, दोनों बातें बताइएगा। मिर्जा शुजात साहब गुज्जर खान तो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, तमाम सुनने वालों को मेरा आदाब। आज इस सॉन्ग नाहिद अख्तर साहब की आवाज जी लाजवाब, जबरदस्त, क्या सुरीली आवाज थी। नो डाउट, मतलब नाहिद अख्तर अपने दौर की बेहतरीन सिंगर और उसके साथ साथ खूबसूरत भी, मतलब खूबसूरत सिंगरों में उनका शुमार होता है। जैसे मलका तरन्नुम नूर जहान जो थी, क्या बात है, वो तो खैर हीरोइन भी थी, लेकिन नाहिद अख्तर साहिबा जो हैं वो ओनली सिंगर, मगर बहुत ही डिसेंट पर्सनालिटी रखने वाली खातून, और उनकी आवाज में ऐसे ऐसे गाने, क्या बात है, क्या बात है। अरे भाई आज तो संजू भी आ गई है, कहती है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलामती आफियत की अनगिनत दुआएं नदीम, अल्लाह पाक सलामत रखे, इलाही आमीन। खुशगवार मिजाज के साथ आपको खुश आमदीद कहती हूँ। कही ये कैसे मिजाज और कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। कल आपने मुझे बहुत जबरदस्त सॉन्ग डेडिकेट किया था, अल्लाह जी तुझे सुन लिया है, अल्लाह करे आ जाए तू, यकीन करे रूह मन मैं आ जाती, मगर पेट्रोल पंप पर रश बहुत था, तो आप पेट्रोल डाल रही थी गाड़ी में या डलवा रही थी? रश में मतलब पेट्रोल डल के आदमी निकला था, और गाड़ी में तो सुना भी जा सकता। खैर ये मजाक था, इसीलिए आप तक पहुंच नहीं सकी थी, नो प्रॉब्लम, सुन रही थी, बेहतरीन शो था, सॉन्ग के लिए दिल से शुक्रन, प्लेलिस्ट भी अच्छी थी। आज भी मूड है आपकी तरफ से एक सॉन्ग मुझ नाचीज के लिए हो जाए, तो अब तो आप आ गए हैं ना काटे ना कटेरे के अलावा इंशाल्लाह इख्तिताम तक साथ हूं। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत दफा डेडिकेट हो गया, काफी कट चुका है, और आज के प्रोग्राम की नौयत ऐसी है जो पुराने गीतों के जरिए बहुत से सुनने वालों को के दिल की आवाज बन जाते हैं। ऐसे ही बहुत प्यारी सी चाची, प्यारी सी तानिया जी, जिन्हें पुराने गीतों से लगाव है, नौरीन बहना उनके भी दिल की आवाज है। साथ में ही मेरी शहजादी जरी नूर भी हैं, आपकी क्यू शीट का एक सॉन्ग मेरी तरफ से डेडिकेट कर दीजिएगा, खुशी होगी। अगर ये है तो बहुत खूबसूरत होगा। हाँ जी, बहुत ही अच्छी बात है, गाने की फरमाइश आ गई है, और सलामत रहें। और पाकिस्तान बाजार से हमारी प्यारी बहना रेहाना भी आ गई हैं, कह रही है सलाम वालेकुम नदीम भाई, एक फिल्म की गाने की रिक्वेस्ट कर दी है। अगर मिल जाए तो लगा दीजिएगा ये ट्रैक। बिल्कुल जनाब, ये हमने कर दिया मार्क आपके मैसेज को, और हम जरूर जरूर चलाएंगे अगर मिल गया तो। हैं जी, ते हैं जी। और पीर मोहम्मद इलियास साहब कह रहे हैं नदीम भाई द ग्रेट, नाइस शो, आई लाइक इट, प्लीज प्ले सॉन्ग नूर जहान ते मेहंदी हसन। अच्छा जी, और गुड नाइट भी कह दिया साथ में, गाना आप सुनेंगे या नहीं सुनेंगे पहले ये बताइए, गुड नाइट पहले कह दिया आपने। और सलीम एमन साहब का मैसेज आया, सुने हो आज अयाज के शो में चाची और रूसा जी के SMS आए थे, दिल को बहुत खुशी हुई, सुने उम्मीद है कि आपके शो में भी उनके SMS आने चाहिए। सलीम एमन कह रहे हैं जरूरी तो नहीं है, वक्त की बात होती है भैया, अरूसा के पास और चाची के पास वक्त हुआ और वो सुन रही हुई, उनका दिल किया तो वो करेंगी, नहीं किया तो क्या कह सकते हैं, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। और कहती हैं संजू के तुमने मेरे अंदर जो खूबसूरती देखी वो तुम्हारा अपना हक से हाय अल्लाह इक्तबास है बेसिकली। اور چاچی کو خوش آمدید کہتی ہوں. سلامت رہے. میرا پسندیدہ سیگمنٹ آج کا واو. بہت خوش ہیں ماشاءاللہ سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ روح من. پہلے گیت ہی کمال, زبردست شاعری, دل کی آواز. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اسی بات پر ہم جائیں گے ایک بریک کی جانب.
1: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: facebook.com/fm247365

वेलकम बैक कहेंगे, यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई। अच्छा, मेरा एक सवाल है, और ये सवाल नहीं बल्कि मैं पूछ रहा हूं आपसे। आज मेरे पास एक रील आई और उसमें एक बहुत ही ओल्डी गोल्डी एक गेम था। अच्छा, अब उस गेम का मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूं, आप लोगों ने उस गेम का नाम बताना है। जितने भी मेरे ओल्डी गोल्डी लिसनर्स हैं उनको शायद ये याद हो, जेंजीज वगैरह ये नए जितने भी बच्चे हैं इनको तो वो गेम भी नहीं याद होगा। वो गेम कुछ ऐसा था कि किसी भी गली में या मैदान में तकरीबन 8 खाने बना लिए जाते थे, डब्बे जमीन पर डब्बे बना लिए जाते थे, और वो डब्बे जो होते थे वो एक फ्रेम की सूरत में होते थे, और उन डब्बों के बीच में जो है रास्ते बने होते थे हर डब्बे के, मतलब बीच में जस्ट लाइक आप एक पेंसिल से ड्रॉ करें एक पेज पर, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें और रेक्टेंगल डबल लाइन से ड्रॉ करेंगे, तो जाहिर है अब डबल लाइन से अगर आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके बीच में एक स्पेस बन जाता है, तो वो बीच वाला जो स्पेस है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो बीच वाला जो स्पेस, तो ये डब्बे जो है वो ड्रॉ कर दिए जाते थे 8 के करीब, और 8 डब्बे जोड़ी की सूरत में होते थे, एक दायां और एक बाएं, एक दाएं एक बाएं, एक दाएं एक बाएं, एक दाएं एक बाएं, इस तरह। और उसमें हर डब्बे के कोने पर जो है ना एक बीच में, वो जो बीच में जो स्पेस, लाइनों के बीच में स्पेस होता है, उसमें एक एक करके लड़के खड़े हो जाते थे, और दूसरी टीम जो होती थी वो उन्होंने उन डब्बों को पार करना होता था, और जो लाइन के बीच में होते थे वो डब्बे के अंदर नहीं आ सकते, और जो डब्बे में होते थे वो लाइन के बीच में नहीं जा सकते, तो उन्होंने ये सारा क्रॉस करके जाना होता था। तो ये एक गेम था, तो गेम की पूरी मैंने आपको जो है वो जायचा खींचकर बता दिया। आपने ये बताना है ये गेम का नाम क्या था, अगर किसी को मालूम है तो जरूर बताए। मैसेजेस आपके जनाब मेरे सामने मौजूद, और अय्यूब लाला आ गए हैं, कह रहे जान है जिगर ये हबीबी सलामत रहे। जिगर आपको, एस गुल को, मुश को, महनूर को, हिना गुल को, शेरबानो को और तमाम सुनने वालों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और उन्होंने इन तमाम को एक ट्रैक डेडिकेट करने के लिए कहा है, और कहा है कि अपनी मर्जी का कर दीजिए। बिल्कुल करेंगे जनाब, बिल्कुल करेंगे। अच्छा, मैं ना एक गाना आप लोगों को सुना रहा हूं, एमी मेरे जहन में आया है लाला। अब पता नहीं आपको ये गाने पसंद आते हैं या नहीं आते हैं यार, ये थोड़ा सा हटके है, समझिए प्रोग्राम से हटके ये मैं गाना चला रहा हूं। ये गाना जो है लाला, ये शेरबानो, यूसुफ खान और शेरबानो एक पिक्चर थी, पश्तों का पिक्चर था, यूसुफ और शेरबानो, यूसुफ खान एंड शेरबानो। तो ये उस पिक्चर का गाना है जो कि अय्यूब लाला की जानिब से एस गुल को, मुश को, मानूर को और हिना को, हिना गुल को डेडिकेट करता हूं, और गाना कुछ यूं था।

0: facebook.com/fm247365.
1: Welcome back, Russia, Russia, Russia, Russia, आगे नहीं आ रहा. अच्छा भाई, मुझे अच्छा लगा, मजा आ रहा था मुझे. हो सकता है सुनने वालों को कि यार अचानक से ये क्या हो गया, लेकिन इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में. आगे बढ़ते हैं जनाब आपके मैसेजेस की जानेब. सलीम भाई आपका चुटकुला है वो हम बाद में पढ़ेंगे. और पीर मोहम्मद इलियास साहब कह रहे हैं भैया आपके साथ हैं, क्या बात है, सुन रहे हो. चाची संजीदा जी, अरूसा जी और मुश को सलाम कह रहे हैं सलीम मेमन. और वंडरफुल वंडरफुल गेम होता था उसको सिंधी में वंजवेड़ा कहते थे. माय लोनली ब्रदर, अरे वंजवेड़ा सही बहुत अच्छा नाम है, लेकिन यार उर्दू में क्या कह रहे थे मुझे ज़हन में नहीं आ रहा. वंजवेड़ा, अच्छा आपने खेला कभी लवली, आपका नाम तो लवली है ना, लवली. और आमिर मेरा शहजादा गुलशन इकबाल, मेरे बहुत ही प्यारे बचपन के दोस्त आमिर भाई, वो कह रहे हैं सलाम नदीम भाई. गेम का नाम, अरे वाह वाह वाह वाह, पानी पला, पानी पला, पानी पला, पानी पिला, पानी पिला लिखा होगा ना, पानी पिला. मुझे कुछ कुछ जहन में आ रहा है यार आमिर. अच्छा आमिर के साथ मैं बड़ा बेतकल्लुफ हूँ क्योंकि मेरे बचपन के दोस्त हैं, तो इनसे जरा तू तड़ाक से बात हो जाए तो ऐसा मत समझिएगा कि मेरी आदत ही ऐसी. तो आमिर भाई आज आपके लिए भी एक गाना हो जाए. आमिर भाई जरा गाना माना तो बताओ यार, एक मैसेज और करो, थोड़ा पैसे जाया करो और बताओ आपकी पसंद का गाना चलाना चाहूंगा मैं. और साहब ज्यादा साहब आ गए हैं और कह रहे हैं नदीम भाई कल के सवाल का जवाब मुस्तकबिल में मैंने दे दिया था, आपने पढ़ा ही नहीं. अरे मियां आपका जवाब पढ़ा था हमने और मैंने नाम लिया था बकायदा कि चंद लोगों ने इसका जवाब दिया. नौरीन बहना ने हमारा जवाब दिया था, आपने दिया था और मेरा ख्याल है किसी ने नहीं दिया था. तो आप आज के सवाल का जवाब बताइएगा, वंजवेड़ा के बारे में, पानी पिला वाले और सही और भी आ रहा है मीसी जी, इसका नाम जो है आपने बताना है, इस खेल का नाम, और जिसने खेला है ये वो भी बताया कि भाई हमने खेला हुआ है. हैं जी, ते हैं जी. और संजू कहती हैं कि प्यार से आपको रूहेमन कहती हूँ, सो स्वीट. ये रूहेमन जो है ये बड़ा खूबसूरत सा नाम है और आपकी जरा नवाजी है कि आपने ये नाम मुझे दिया है. और वाओ, यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई. अदीला कह रही है सलाम, अदीला सलाम कह रही है साथ दुआ भी, दुआ का भी कहा है. अदीला मेरी प्यारी सी बहना, जीती रहो, मुस्कुराती रहो, शाद रहो, आबाद रहो, हम भी आपके साथ हैं. यानी कि समझ रही है ना आप, मुझसे ये छोटी झूठी, मुझसे ये झूठी कहानी मत सुनाओ के माली मर जाए और बाग ठीक रहे. कैसे मुमकिन है राहे मोहब्बत में महबूब बिछड़ जाए और दिमाग ठीक रहे. वो लैला मजनू के दौर थे, ये लैला बिछड़ गई तो मजनू बन गया कैस. गेम खेला है, नाम जहन में नहीं आ रहा, बस यही तो चक्कर है. राशो राशा, इस सॉन्ग की तर्ज दुखी है. क्या सॉन्ग भी दुखी है? बिल्कुल दुखी है ये. मोहब्बत में मारों का ये गाना है, ड्यूट गाना है. और ये गाना जो मेल सिंगर है ना, उनका नाम है हिदायतुल्लाह, पाकिस्तान केपीके के बहुत बड़े सिंगर थे ये भी, आप लोगों को ये भी बता दूं. और मेरे वालिद मोहतरम के शागिर्द भी थे इसलिए मुझे याद है. और सलाम, कैसे हैं वाले साहब को, संजू को और तमाम सुनने वालों को सलाम कहा है मेरी प्यारी शहजादी बहना जरीन नूर. हैं जी, जी हैं जी. इनामुल हक कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई जान कैसे हैं आंटी चाची रुसा संजीदा हलीमा समी सलीम भाई और सब सुनने वालों को सलाम. हैं जी, हैं जी. इनाम भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? और सलाम नदीम, मैं सनम, सनम तेरी कसम। और इस खेल का नाम दरीचा कहते हैं। हाँ, तो इतने सारे नाम आ रहे हैं, मेरा दिमाग घूमे जा रहा है। दरीचा हो गया, पानी पीला हो गया, और क्या था वंज, एक सिंधी में इस खेल को जो नाम दिया था भाई ने, कहाँ गया वो मैसेज, बड़ा जबरदस्त, मैं बिल्कुल लिखूंगा ये। हाँ, वेड़े वड़ी जो वड़ी वंज वड़ी वंज वड़ी वड़ी वंज। अच्छा, ये मैं तमाम नाम लिखूंगा, बड़े प्यारे प्यारे से नाम है ये। और अब नहीं नहीं अभी नहीं है, ब्रेक में टाइम है। एक और चुटकुला आ गया है साहबजादा का, वो भी हम शामिल करेंगे एक साथ साथ, क्योंकि पहला हक है जनाब मोश्क का। सबसे पहले चुटकुला उसका आया था, तो उसका चुटकुला अगर हमने नहीं पढ़ा तो वो फौरन नाराज हो जाएगी, तो पहला चुटकुला उसका ही पढ़ेंगे। और कोई अच्छा सा सॉन्ग संजू के लिए, कह रही हैं प्यारी सी जरीन नूर, बिल्कुल अच्छा सा सॉन्ग आप बताएं मुझे आज मेरी प्यारी सी बहना जरीन नूर, मैं आपकी पसंद से चलाऊंगा। तो आपने मुझे बताना है कि हमने कौन सा गाना आपकी जानिब से संजू को डेडिकेट करना है, यानी कि समझ रही है ना आप। संजू कह रही हैं सलीम भाई जीते रहे, नारीन बहना भी आ गए, कह रही अस्सलाम वालेकुम नारीन भाई, कैसे मिजाज हैं, ढेरों सलामती की दुआएं हैं आपके लिए और तमाम मसीन सबातों को सलाम और ढेरों दुआएं। इस खेल को वंजू कहते थे नारीन भाई, बहुत खेला है बचपन में कजन्स के साथ वंजू। अभी तो सिंधी टाइप का हो गया वंजवेड़ा वंजू। और संजू बहना को सलाम, और एक सॉन्ग मैडम की आवाज में अगर हो जाए तो क्या बात है, डेडिकेट जरूर कीजिएगा, गाना अच्छा है। हा हा हा हा, गला खाशक हो गया मेरी प्यारी सी चाची, हाय चाची, मेरा दिल भी जो है ना वो हो रहा है बहुत उदास, नहीं करें मुझे, और आप भी खुश रहें, मैंने कहा ना जिंदगी में लौट आए मेरी प्यारी सी चाची। क्या करें। अच्छा जी, सलीम मामू को बेस्ट विशेष, मेमन की वजह मामू बना दिया। ये मुश्क का मैसेज है जनाब जो हमने पढ़ा है, और मुश्क कहती है कि आज मैंने पेनाडोल की गोली को बेवकूफ बनाया, बगैर बुखार के खा लिया, अब अंदर जाकर बुखार को ढूंढ रही है बेचारी गोली पेनाडोल। अच्छा चुटकुला है भाई, हमने जो है मोश का चुटकुला शामिल कर दिया, और अब साहबजादा साहब का और सलीम मेमन का भी चुटकुला हम शामिल करेंगे, मगर पहले हम गाने को शामिल करेंगे। और ये गाना जनाब संजू की जानिब से डेडिकेट करेंगे, उन्होंने एक नहीं दो नहीं बहुत सारे लोगों का डेडिकेट किया है, उनके नाम लेना जरूरी है भाई, नाम लेके आ जाए। एक तो अदीला हो गई जनाब, ठीक है जी, दूसरी हो गई क्या नाम, क्या क्या नाम थे, क्या नाम थे, नाम क्या थे, नाम क्या थे, नाम क्या थे, उनका मैसेज ढूंढ रहा हूं। और हाँ, तानिया हसन जी को, नौरीन बहना को, और उसके साथ जरीन नूर को, और जरीन नूर, तानिया हसन, चाची एन आदिला, इनको खसूसी तौर पर इन्होंने, अब कोई नाम भूल गया हूं तो भाई माजरा चाहूंगा, ये ट्रैक डेडिकेट किया है एल्लो फड़ो।

0: Like us on facebook.com/FM247365.
1: FM247365. This is your music.

वेलकम बैक। बहुत खूबसूरत है मेरा सनम। उम्मीद करता हूं जनाब आपको ये ट्रैक पसंद आए होंगे। और अब जो है आपके मैसेजेस की जानिब चलते हैं। और सबसे पहले मैसेजेस में हमने दो चुटकुले शामिल करने हैं जो कि अब मैंने वादा किया था भाई। और पहला चुटकुला जनाब सलीम अहमद साहब का हो गया, क्योंकि एक तो हमने मुश्किल शामिल कर लिया। कह रहे एक बीवी ने अपने शौहर से पूछा कि अगर मैं तुम्हें 5 दिन नजर ना आऊं तो तुम्हें कैसा लगेगा। शौहर ने जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर उस दिन शौहर को बीवी ना इतवार को नजर आई, ना पीर के दिन, ना मंगल के दिन, ना बुध के दिन, ना जुमेरात के दिन नजर आई। जब जुम्मे को थोड़ी थोड़ी आंखों की सोजिश खत्म हुई, फिर उसको बीवी जो है नजर आने लगी। यानी कि इतना गूटा उसको। वाह भाई वाह, बहुत खूब। अच्छा जी, पीर मोहम्मद इलियास साहब कह रहे हैं, दीन भाई आपके साथ हूँ, आई एम हेयर। ये हुई ना गल। चाची संजीदा और अरूसा जी को सलाम भी कहा है इन्होंने। अच्छा ये मैंने क्योंकि पुराने मैसेजेस पढ़ रहा था,

और लवली कह रहे हैं कि वंडरफुल गेम होता था, उसको सिंधी में वंज वेड़ा कहते थे। ये भाई सिंधी का नाम भी हमें याद हो गया है, और पंजाबी में जो है वंजू, उर्दू में अभी तक दो नाम आए हैं सामने, एक तो पानी पिला आमिर ने बताया भाई हमारे दोस्त आमिर ने, और एक और नाम आया था वो भी हम अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। और नदीम भाई कल के सवाल का जवाब मुस्तकबिल, ये तो हो गया था आपका मैसेज, अरे हाँ ये वाले वो वाले मैसेज हैं।

0: हाँ बीवी अजी मेरे बाद जब तक मेरी कब्र की मट्टी सूख ना जाए तुम दूसरी शादी नहीं करोगी। शौहर जान मैं कब्र पर हेलीकॉप्टर उड़ा के आ जाऊंगा। यार ये मियां बीवी से रिलेटेड ही क्यों लतीफे होते हैं ज्यादातर। अच्छा जी कोई अच्छा सा सॉन्ग संजू के लिए। मैंने जैसा कि बोला था मेरी प्यारी सी बहना जरीन मुझे आपने बताना है कौन सा गाना और उन्होंने बता दिया भाई गाना भी। और नवेद भाई हमारे छोटे भाई जो हैं वो आ गए हैं वो शो सुन रहे हैं और उनके साथ शकील भी सुन रहे हैं और एक गाने की फरमाइश भी की है उन्होंने। ओके जी आप लोगों की फरमाइशें जमा हो रही हैं और अच्छा एक मैसेज आया है संजू को ट्रैक डेडिकेट करना चाह रहे हैं मगर नाम नहीं लिखा तो इसलिए हम मैसेज ही नहीं पढ़ेंगे। अस्सलामुअलैकुम कैसे हैं भाई आप। लाला को संजीदा अभी को मुश्को मानूर को और सब सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। एस गुल भी आ गए। एस गुल गाना सुना था जो लाला ने डेडिकेट किया था यानी अपनी आवाज में अच्छा सा सॉन्ग लाला के नाम मेरी आवाज में एस गुल वाह भाई वाह चले कोशिश करेंगे। अच्छा पुराने सॉन्ग ज्यादातर याद नहीं है जरीन नूर मेरी बहना को बस एक ही याद था उन्होंने मुझे बता दिया है वो हम जरूर चलाएंगे। ठीक है जी। और नदीम भाई सलाम शो बहुत सुपर हो रहा है सॉन्ग बेस्ट है फैसल मैं फैसल अरब टिकटॉकर। फैसल अरब कैसे हो बहुत दिनों बाद आए लगता है टिकटॉक ज्यादा ही बन रही है आजकल है भाई। हमने बोला था यार कोई लिंक शिंक भेजो हमें सब्सक्राइब या लाइक्स या जो भी वो बहुत ज्यादा हो जाएगा मैं खुद भी देखूंगा। और एक सॉन्ग सलीम अहमद कह रहे हैं अपनी वाइफ को डेडिकेट करना चाह रहे हैं भाभी का नाम लेके ब्लैकमेल करते हो पता है कि मैं कर दूंगा डेडिकेट खैर कर देंगे। लवली कह रहे हैं कि मेरे बचपन का पसंदीदा पसंद का है आप मेरे साथ खेलोगे आ जाओ।
1: क्या बात की है भाई जान आपने। ओके टेक।
0: और सनम कह रही है नदीम एक गाना संजू के नाम। ओके अच्छा ये सनम का मैसेज था सनम माजरा चाहूंगा नाम लिख दिया करें ना बस। नदीम भाई नहीं सुना सॉन्ग शो अभी सुनना शुरू किया है एस गुल कह रही है ये तो गलत बात है पर लाला ने भी मैसेज नहीं किया कि गाना बड़ा अच्छा था। अच्छा चलो मैं थोड़ा सा गाना दोबारा सुनाऊंगा मैंने थोड़ा सा ही चलाया था एक वर्स चलाया था उसका। आगे बढ़ते हैं जनाब। अच्छा एक और चुटकुला आ गया शादी क्या होती है ये समझने के लिए एक साइंसदान ने शादी कर ली अब उसे समझ नहीं आ रहा कि साइंस क्या होती है। क्या बात है आज मियां बीवी से रिलेटेड बड़े चुटकुले आ रहे हैं। संजू कहती है प्यारी शो की रौनक मुश्क बहुत सा प्यार सवा गुल जीती रहे बहुत सा प्यार। और शुक्रन कहा रूहेमन भाई आपकी जानिब से डेडिकेट हुआ आपकी शहजादियों को। तो जनाब जनाब जनाब हाँ गानों की फरमाइश साथ ही साथ पूरी कर रहे हैं हम। अभी एक पुराना गाना है जनाब और ये गाने की फरमाइश की थी हमारी प्यारी सी बहना रेहाना ने पाकिस्तान बाजार से। तो रेहाना मेरी बहना आपकी फरमाइश एलो फड़ो।

वेलकम बैक है ये सुनियो आजा सजना आजा रे आजा रूना लेला की आवाज़ ही है वैसे और संजू को पसंद भी है हैं जी ते हैं जी और मैसेजेस आप कर रहे हैं कि चाहे स्पेस आपका नाम आपका मैसेज उसको सेंड कर रहे हैं 3636 पर भाई एक खेल का पूछा था मैंने आपसे उस खेल का नाम पूछा था तो जिस जिसको याद है वो अपने अपनी यादें जो है वो इससे जोड़ रहा है तो भाई हमारे लवली ने भी खेला हुआ है संजू ने भी खेला हुआ है और नौरीन बैना ने भी खेला हुआ है और हमारे कुछ और भी दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने मैसेज किया था कि भाई हमने वंजवेड़ा बहुत खेला है सही बहुत खेला है और सॉन्ग सिलेक्शन पसंद आ रही है जनाब संजू को नौरीन बैना कहती हैं एक और चुटकुला आ गया भाई चुटकुला हम आपका बाद में शामिल करेंगे और हलीमा पठान कह रही है मेरी बहन के भाई मैं भी सुन रही हूं चुप चाप होकर एंड तक साथ हूं इंशाल्लाह दोबारा मैसेज आए या ना आए जीती रहो मुस्कुराती रहो हलीमा बहना हम आपको याद रखेंगे कि हमें पता है कि भाई आप हमारे साथ हैं यानी कि समझ रही है ना आप हाँ लाला हम आपसे नाराज हैं लगता है कि शेख साहब के पास हैं आप लेकिन शेख साहब का मैंने जिक्र किया और वो कहते हैं कि जिगर शेख साहब फरमाते हैं हर चीज दस्तियाब है इसके सिवा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए जिसके सिवा मुझे जरा सा है क्या लिखा हुआ शेख साहब ने अच्छा अच्छा आप समझाऊं मैं वो शेख साहब फरमाते हैं कि हर चीज दस्तियाब है उसके सिवा मुझे हर चीज दस्तियाब है उसके सिवा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए जिसके सिवा मुझे हाय हाय हाय हाय यानी कि समझ रहे हैं ना आप अयूब लाला दिमाग देखें कैसा पकड़ा इसको जरा सा झूठ ही कह दो कि तुम बिन दिल नहीं लगता जरा सा झूठ ही कह दो कि तुम बिन दिल नहीं लगता तुम्हारा दिल फल जाए तुम्हारा दिल भल जाए तुम फिर से मुकर जाना मेरा ख्याल फिर जाए तुम्हारा दिल फिर भर जाए मेरा ख्याल है जरा सा झूठ ही कह दो कि तुम बिन दिल नहीं लगता तुम्हारा दिल भर जाए फिर तुम फिर से मुकर जाना मोहब्बत करने वालों की भी एक बचकाना सी जिद होती है चुप कराने के लिए वही चाहिए जो रुला कर गया था हाय हाय हाय हाय हाय लाला आज उदास लग रहे हैं मुझे फुल टाइम लाला आपने गाना सुना या नहीं सुना ये बताइए यार ना आपने सुना ना सबा गुल ने सुना जिन जिनको आपने डेडिकेट किया उन लोगों ने सुना नहीं यार ये क्या बात है लाला ये तो गलत बात है यार

ये वाला गाना चलाया था लाला हमने। हैं जी ते हैं जी, आप बताइए सुना था या नहीं सुना था। एनीवे जनाब, अभी आपको लेकर जाएंगे एक ब्रेक की जानिब।

0: FM 100's time check. It's 12 midnight.
1: वेलकम बैक कहेंगे जनाब. लेकर जा रहा था आपको गाने की जाने, जैसे ही घड़ी देखी, अरे भाई ब्रेक आ रही है ब्रेक. तो जनाब अभी हम जिस ट्रैक की जानिब जा रहे हैं, ये ट्रैक जो है हमारे प्यारे से पीर मोहम्मद इलियास साहब ने फरमाइश की थी. तो पीर मोहम्मद इलियास साहब एलो फड़ो.

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको, जीवन भर साथ निभाएंगे हम दोनों। और अब आगे बढ़ते हैं जनाब आपके मैसेजेस की जानिब, फरमाइशें आपकी काफी जमा हो चुकी हैं, वो भी साथ ही साथ चला रहा हूं मैं। और गुल तेरा रंग चुरा लाए हैं गुलजारों से, हमीद गुल साहब इस्लामाबाद से, ठंडी ठंडी हवाओं के साथ कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, सलामत रहे हमेशा, नाइस सॉन्ग, गाने उनको पसंद आ रहे हैं, तोहफा भी भेजा उन्होंने, कह रहे हैं हमारी दोस्ती अब भी है लेकिन हमारे साथ वो बचपन नहीं है, कुशादा थे कभी आंगन दिलों के, दिलों में अब कोई आंगन नहीं है। हाय हाय गुल साहब, वाह वाह वाह वाह वाह भाई, ओके ठेक ओके ठेक ओके ठेक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, मुश्क कहती हैं सलीम मामू बीवी को मारने लगते हैं इसीलिए अभी तो गाना डेडिकेट किया उन्होंने, अभी आएगा गाना। और इनका एक चुटकुला जो है वो भी शामिल करते हैं, कहती हैं कि बैठे बैठे दिल ने कहा दोस्त को मैसेज करूं, फिर सोचा दिल तो पागल है, फिर सोचा दिल पागल है तो क्या है, दोस्त कौन सा अल्लामा इकबाल है। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शुक्र है मियां बीवी से हटकर भी कोई आया चुटकुला। तो इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, क्यों उदास पड़ते हो सर्दियों की शामों में। और मैसेज लाला कह रहे हैं कि जिगर सॉन्ग तो बहुत अच्छा था लेकिन सुना नहीं था। लाला ये तो फिर बेईमानी हो गई ना। और पीर मोहम्मद इलियास साहब ने थैंक यू कहा है। एस गुल कह रही है नदीम भाई अच्छा था सॉन्ग, सुन लिया आपके अब्बू का है ना, नहीं नहीं अब्बू का नहीं है, ये फिल्म थी यूसुफ खान शेरबानो, उस फिल्म का ये गाना था, हिदायतुल्लाह साहब ने गाया था, लेकिन लाला के जमाने का सॉन्ग था, अच्छा था, लाला के जमाने का नहीं था ये, लाला के जमाने से भी पहले का गाना ये। और हम आपको पख्तो गाना सुनाएगा, अच्छा सा सुनाएगा, डोंट वरी डोंट वरी। और क्या था जनाब, सनम ने एक गाना डेडिकेट किया है संजू को, वो भी कर देंगे जनाब, नाम लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है। और उसके साथ नदीम भाई नहीं सुना, अच्छा जी जिंदगी साथ है, आए हाय आज तो सभी साथ हैं तो जिंदगी क्यों नहीं होगी साथ, हैं जी जी हैं जी, बेहतरीन शो हो रहा है। और क्या कह रही हैं, मैसेज के बिना रह ना सकी, आप बहुत ही अच्छे हैं, जरा नवाजी आपकी हुस्ने समात है, मैं यही कहूंगा। और इतना बड़ा चांद सिवाय उनका एक, नदीम भाई इतना बड़ा चिन्नादा पता नहीं किया, ये हमारे साहबजादा साहब का मैसेज है, और इसको भी जरा मुझे साहबजादा मार्क कर लिया, मुझे हिज्जे करने पड़ेंगे, समझ में नहीं आ रहा, इसे गलत वलत पढ़ दूं तो गलत हो जाएगा भाई, समझ रहे हैं ना आप। चले इसी बात पर हम आपको एक और ट्रैक की जानिब लेकर चलते हैं, और ये ट्रैक जो है हमारे सलीम मेमन साहब जो हैं वो अपनी वाइफ को डेडिकेट करना चाह रहे हैं। जरा सब लोग गौर से सुनिएगा, ये मियां बीवी के जो है ना लतीफे बड़े भेजते हैं, ठीक है ना, तो जरा ये गाना सुनिएगा जो कि उन्होंने सलीम मेमन भाई ने अपनी वाइफ को डेडिकेट किया है, उनकी जानिब से तो हो ही रहा है लेकिन इस पर चर्चा जरूर होगी, पहले गाना सुनिए।

वेलकम बैक है प्यार नालो प्यार सजना हंसी तेरे पीछे दिल हारे सजना। ये रिमिक्स भी आए हैं बड़े और बड़ा मजेदार म्यूजिक के साथ। मलका तरन्नुम नूर जहान की आवाज सुनी है आपने और उम्मीद करता हूँ कि संजू को समझ में नहीं आया होगा। अच्छा भाई मुश्क जी, वाइफ से थोड़ा थोड़ा डरना पड़ता है, हम शौहर लोगों को मासूम होते हैं ना। सलीम अमन मजा रहे मुश्क को, हमें भी बता दो यार ये बात। और लैला बोल चची कर मैं बिल्कुल पेट हूँ फिट यानी, और आपका शो इंजॉय करता हूँ, मुश्क के चुटकुले इंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन लैला पति नहीं क्यों मेरा दिमाग कह रहा है कि कुछ ना कुछ है यार, या तो भाभी से झगड़ा है या फिर भाभी जैसी से झगड़ा है। कभी कभी वैसे दिल करता है कि इंसान खामोश रहे, यानी कि समझ रहे ना लाला, मैं मजाक कर रहा हूँ दिल पे नहीं लीजिएगा। पीर मोहम्मद इलियास कह रहे हैं नदीम भाई प्लीज, ए नैयर अच्छा एक और फरमाइश कर दी भाई जान, इतना भी नहीं होता पीर साहब, आपकी एक फरमाइश हमने पूरी की है, दूसरी का मौका मिला तो, यानी कि समझ रहे हैं ना आप, वक्त भी बड़ा महदूद सा है, फरमाइशें भी बेतहाशा हैं, तो अब फौरन से पेशतर हम एक फरमाइश की जानिब जा रहे हैं जनाब, और ये फरमाइश हमारी प्यारी सी बहना जरीन नूर की जानिब से है जनाब। ये क्या चल रहा है भाई, गाने चले जा रहे हैं भाई खामखा, तो ये जनाब ट्रैक जो है जरीन नूर की जानिब से डेडिकेट कर रहे हैं संजू को, एल्लो फड़ो।

0: कुछ नहीं।
1: क्या गाना था यार, आलमगीर साहब और नैनाज, माहौल बना दिया भाई, माहौल बना दिया। अच्छा जनाब, इनामुल हक भाई जो है उनका मैसेज आया अगेन, और अल्लाह पाक का शुक्र है कि आप सुना है कि आप खैरियत से हैं, और वालिद मोहतरम कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, वो भी ठीक ठाक है। इनाम भाई आप कैसे हैं? ओके ठीक है, खैरियत से हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा मैसेज, चंद मैसेज शामिल करेंगे और उसके बाद जो है वो फिर आपको एक गाने की जानिब लेकर जाएंगे। ज्यादा बातें नहीं करेंगे ताकि आप लोगों की फरमाइशें भी पूरी हो जाएं। और साहबजादा साहब कहते हैं कि नदीम भाई आपको सुल्तान राही साहब के बारे में मजेदार बात बताता हूं। लोग उनको पंजाबी समझते हैं लेकिन वो उर्दू स्पीकिंग थे। वाह वाह, ये आपको कैसे पता है? आपसे उन्होंने उर्दू में बात की होगी। मजाक कर रहा हूं यार। सुल्तान राही साहब ने अपने जो फिल्मी करियर जो है उनका, उसमें उन्होंने उर्दू फिल्में बेतहाशा जो है वो की हैं, और ज्यादातर में वो विलन का रोल करते थे उर्दू मूवीज में, और बाद में जब फिर पंजाबी पिक्चरों में आए तो पंजाबी पिक्चर्स के वो बेताज बादशाह बन गए। और लगता है हर बार की तरह आज भी मेरी फरमाइश पूरी नहीं होगी। अगर गाना लगा दें तो इकबाल भाई यानी कि पुफा के नाम जरूर लीजिएगा। मैं सनम, सनम अब आपने ऐसी बात की है तो आपका गाना हम अभी सुना रहे हैं, और ये गाना जनाब सनम की जानिब से पुफा के लिए, एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे जनाब दो साथी जीवन के। सनम जी आपका गाना चल गया, फुफा को डेडिकेट कर दिया, खुश हो गई। अयूब लाला कहते हैं कि शरारतें बहुत अच्छी लगती हैं, जिगर आपके शो में मजा बहुत है, वक्त की किल्लत की वजह से कभी कभी शो मिस हो जाता है। अरे सर कोई मसला नहीं, लाला जीते रहे, मुस्कुराते रहे, हमें आपसे मोहब्बत है, थी है रहेगी, कोई मसला नहीं। अच्छा जी नाइस सॉन्ग, थैंक्स जरीन नूर महना ने कहा है। और अस्मा आ गई है, कहती है सलाम ब्रो क्या हाल है, शो बेस्ट है, लव यू ब्रो, जीती रहो मेरी प्यारी सी बहना। और संजू ने मेहनत मन्नत मानी थी, पता नहीं दिया है, संजू बता दो मन्नत का दिया कि नहीं। अयूब आफरीदी ये और संजू आप दोनों बताएं जरा, ये मन्नत का क्या चक्कर है भाई, मन्नत वन्नत जो आपने मानी थी वो पूरी हुई या नहीं हुई। और शुक्रन नौरीन बहना, मगर पंजाबी ज्यादा समझ नहीं आती, क्या करूं, ये संजू का मैसेज आ गया नालो नाल, वक्त कम है। नवीद भाई आपका मैसेज अभी पढ़ता हूं, लेकिन पहले मैं जरा साहबजादा का मैसेज पढ़ लूं। हमारे एक इकबाल साहब वो उर्दू स्पीकर थे, वो बैठे थे सुल्तान राही, मेरे सगा खालाजाद भाई है। अरे वाह भाई वाह साहबजादा साहब, ये तो क्या बात बताई है आपने, मतलब सुल्तान राही साहब बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का, और राही साहब के बारे में मैं चाहूंगा कि आप कुछ बताइए, जो हमें पता है उस हवाले से तो मैं अभी बता नहीं सकता क्योंकि वक्त बड़ा तेजी से गुजर रहा है। लेकिन साहबजादा भाई आप मुझे याद दिलाइएगा कल के शो में कि मैं राही साहब के हवाले से कुछ बातें बताऊं और कुछ बातें आप बताएंगे। अच्छा अब बढ़ते हैं जनाब हमारे प्यारे से जो है शकील भाई और नवीद छोटे भाई की जानिब, इन्होंने भी बहुत देर से फरमाइश की हुई थी, तो उनकी फरमाइश एलो पढ़ो।

वेलकम बैक कहेंगे। अच्छा भाई, हमारी नौरीन महना का मैसेज आया है, मेरी रिक्वेस्ट किथे गई? लो जी ब्रो, क्या बात है मेरी महना। अच्छा बाद में शुक्रिया शुक्रिया हकीम भाई, सुन लिया था। और ना मैं थोड़ा सा जैसे अयूब लाला को सुनाया था, आपको भी सुना था अयूब लाला को जो सुनाया था ना, ये था ना।

और हमारे मुस्तफा भाई सलीम मेमन के दोस्त, हमारे दोस्त आमिर भाई, आप लोगों को लास्ट ट्रैक जो है वो, और अस्मा हमारी प्यारी सी बहन, इनको लास्ट ट्रैक डेडिकेट करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी प्यारी सी बहन सबा गुल ने जो है ना एक फरमाइश की थी, और उसके साथ साथ खसूसी तौर पर हमारी प्यारी सी जिंदगी जो है, मेरी जिंदगी ने भी कहा, तो चंद लाइनें आप लोगों को सुना रहा हूं मेरी आवाज में।

वेलकम बैक कहेंगे भाई सुने हो, बात दरअसल ये है, यकीन मानिए गये ने शायद नहीं दिया था मगर जिंदगी हमने तुम्हारे लिए गाया। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अरे मैसेजेस भी आ गए, एस गुल कह रही है थैंक यू सो मच नदीम भाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो जितना भी बेसुरा करता हूँ हम लोगों को अच्छा लगता है, थैंक यू वेरी मच। और जिंदगी भी आ गई है, थैंक्स दिलदार, जबरदस्त आवाज माशाल्लाह से, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा गाया माशाल्लाह से। हलीमा पठान मेरी प्यारी सी बहन कह रही है, तारीफें आना शुरू हो गई खामखा। हाय रुहेमन कसमे दिल में उतरती आवाज, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह रुहेमन, बहुत बहुत शुक्रिया। और सज्जाद भाई को गुरुमंदर से नुमाइश भेज दो साहब, ज्यादा कह रहे हैं। खैर जी अब वक्त जो है वो पर करके उड़ गया है और आखिर में जो हम गाना चलाएंगे खुसूसी तौर पर मेरे प्यारे से दोस्त आमिर भाई के लिए और उसके साथ साथ हमारी प्यारी सी बहन अस्मा के लिए और हमारे प्यारे से मुस्तफा साहब का को जो है सलीम मेमन की जानिब से डेडिकेट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का शो भी आपको थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। कोशिश हमेशा रहती है कि आप लोग जो है वो महजूज हों। तो जनाब

इजाजत चाहने से पहले हम देख लें कि कौन कौन है हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया संजू, थैंक यू वेरी मच, एप्रिसिएशन आ रही है। अस्मा मेरी प्यारी सी बहन कह रही हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जीती रहो मुस्कुराती रहो अस्मा। लास्ट गाना जो है वो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूं आपको एक गाना जो है वो डेडिकेट कर देता हूं आमिर को और अस्मा को, क्योंकि मेरे पास एक मिनट दो मिनट है और उसके बाद लास्ट ट्रैक जो है वो अच्छा। ये लास्ट ट्रैक जो मैं चला रहा हूं ये इतना जो मैंने डेडिकेट किया है ये स्पेशली रिक्वेस्ट थी, बेसिकली ये रिक्वेस्ट गाना है और ये रिक्वेस्ट हमें की थी मुस्तफा साहब ने, सलीम मेमन के भाई ने। तो अब क्योंकि वक्त बहुत महदूद सा रह गया था तो साथ ही साथ मैंने अपनी प्यारी सी बहन अस्मा को और हमारे प्यारे से दोस्त जो है आमिर को डेडिकेट कर दिया। तो अयूब लाला कह रहे हैं जिगर बहुत खूब गाया आपने, बहुत शुक्रिया लाला, एप्रिसिएशन, वाह वाह, थैंक यू। तो इसके साथ ही जनाब चाहेंगे आपसे इजाजत, और नौरीन बहना ने भी बड़ी भाई तारीफ की है। मैंने अपने तौर पर मैं आप लोगों को बताऊं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये समझता हूं कि मैंने आज सही नहीं गाया, गला खाशक है मेरा बड़ा, लेकिन यही गाना मैं आपको जब सही मूड में होऊंगा तो जिंदगी को डेडिकेट करेंगे स्पेशली, क्योंकि वो हमेशा रिक्वेस्ट करती है मेरे गाने की। तो ये नेक्स्ट वाले मंडे को, सॉरी ट्यूसडे को करेंगे ये काम। तो जनाब इसके साथ ही दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।

इश्क की समझी हकीकत खाक हो जाने के बाद। अच्छा, ये वाकई इश्क और मोहब्बत की कहानी बड़ी अजीब कहानी है। शीरी फरहाद की कहानी है, लैला मजनू की कहानी है, सस्ती पुन्नू की कहानी है, ऐसी बेशुमार दास्तान है और हर दास्तान अपनी जगह एक बहुत ही परफेक्ट दास्तान है। मोहब्बत मोहब्बत है, मोहब्बत या तो है या नहीं है। इसके अलावा इसका वजूद और कुछ भी नहीं है। मगर इस मोहब्बत को दुनिया में अजीब सिलसिला बना लिया दुनिया ने। वक्त 1:30, एफएम मंडल पाकिस्तान और अजमल खान शो भी आपके साथ मौजूद। मुजफ्फर वारसी साहब कहते हैं कुछ इस मोहब्बत के बारे में, क्या कहते हैं कि जिंदगी का जख्म गहरा था मगर इतना न था। जिंदगी का जख्म गहरा था मगर इतना न था। तुमसे पहले भी मैं तन्हा था, तुमसे पहले भी मैं तन्हा था मगर इतना न था। जिंदगी का जख्म गहरा था मगर इतना न था। तुमसे पहले भी मैं तन्हा था मगर इतना न था। अपने अपने दाग मुझ पर लगाने आ गए, अपने अपने दाग मुझ पर लगाने आ गए। मेरा दामन मैला था, मेरा दामन मैला था मगर इतना न था। अपने अपने दाग सब मुझ पर लगाने आ गए, मेरा दामन मैला था मगर इतना न था। मेरी खुशबू को नाराज आई हवा की दोस्ती, मेरी खुशबू को नाराज आई हवा की दोस्ती। मैं गली कूचों में रिश्वा था, मैं गली कूचों में रुस्वा था मगर इतना न था। मैं गली कूचों में रुस्वा था मगर इतना न था। तुमसे पहले भी मैं तन्हा था मगर इतना न था। तुमसे पहले भी मैं तन्हा था मगर इतना न था। क्या खबर थी छीन ली जाएंगी आंखें भी मेरी, क्या खबर थी छीन ली जाएंगी आंखें भी मेरी। क्या खबर थी कि छीन ली जाएंगी आंखें भी मेरी। हां मुझे शौके तमाशा था, हां मुझे शौके तमाशा था मगर इतना न था। हां मगर मुझे शौके तमाशा था मगर इतना न था। हिजर में रोना इबादत से मुजफ्फर कम नहीं, हिजर में रोना इबादत से मुजफ्फर कम नहीं। तजुर्बा तो आंसुओं का था, तजुर्बा तो आंसुओं का था मगर इतना न था। तजुर्बा तो आंसुओं का था मगर इतना था। तुमसे पहले भी मैं तन्हा था मगर इतना न था। मेरी खुशबू को नाराज आई हवा की दोस्ती। मैं गली कूचों में रुस्वा था, मैं गली कूचों में रुस्वा था मगर इतना न था। क्या खबर थी छीन ली जाएंगी आंखें भी मेरी। हां मुझे शौके तमाशा था, हां मुझे शौके तमाशा था मगर इतना न था। हां मुझे शौके तमाशा था मगर इतना न था। अब ये बात ये कि सब कुछ तो था मोहब्बत से पहले मोहब्बत के बाद। दास्तान तो वही है कि मोहब्बत से पहले भी ये सब कुछ मेरे साथ था मगर इतना नहीं था जितना मुझे बाद में सहना पड़ रहा है। क्या ये शर्त है, ये लाजमी है कि तुम्हारे साथ से पहले मैं जो कुछ था तुम्हारे साथ के बाद मुझे उससे ज्यादा सहना पड़ेगा। तो फिर मैं तन्हा ही ठीक था ना, फिर तो मैं तन्हा ही ठीक था। फिर तुम्हारा साथ पाने की
مجھے ضرورت کیا ہے؟ تڑپنا ہی ٹھہرا تو پھر وہ پہلے بھی تو تڑپ ہی رہا تھا نا، تو تڑپنے دیتے۔ بڑا خوبصورت کلام تھا یہ مظفر وارثی صاحب کا، اور اب یوں کرتے ہیں کہ شامل کرتے ہیں اشتیاق بشیر کی آواز میں ایک خوبصورت سا کلام۔ اشتیاق بشیر اللہ مغفرت کرے بڑے اچھے دوست تھے ہمارے، غزل کے بڑے خاندانی گائک، استاد بشیر احمد خان صاحب کے بڑے ہونہار فرزند۔

अंतर बदल गया कभी बाहर बदल गया, यूं हुआ कि फिर मैं अक्सर बदल गया। वक्त 1:40 हो चुके हैं, एफएम मिनट पाकिस्तान के कराची स्टेशन से आपको मेरा साथ है। आते कुछ आपके कमेंट्स की जानी बातें, यकीनन आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं यूट्यूब पर, और इस तरह ही सिलसिला बात आगे पहुंचा है। और एसएमएस की जानी बातें, तो एसएमएस जनाब शोभी भाई, एफएम मंडेट सुनने वालों का शौक पहले भी था लेकिन इतना न था, क्या बात है। बहुत शुक्रिया साहब, ज्यादा बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, थैंक यू। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, खुश आमदीद, जज़ाकअल्लाह। और जनाब इसके बाद हम आते हैं कुछ यूट्यूब पर, क्योंकि आप यहाँ मौजूद हैं। और इमरान खालिद खान साहब कहते हैं, सलाम शोभी भाई, क्या हाल हैं जी। अलवालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। और उसके बाद जनाब फिर शुजात मिर्जा में ज्वाइन कर चुके हैं, गुजर खान से कहते हैं सलाम गुस्ताद जी, खुश आमदी, थैंक यू, वालेकुम सलाम, जजाकल्ला, तुम सब खुश रहो। और इमरान खालिद खान के तवील गैर हाजिरी के बाद आपके प्रोग्राम में शिरकत की है आज मैंने, थैंक यू भाई, जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। और कहते हैं उसके बाद कि इमरान खालिद कहते हैं, मेरी आज की फरमाइश है आतिफ असलम का सॉन्ग कुछ इस तरह। आई एम सॉरी, आपको बताया कि मैं आपको मैं अक्सर बताता हूं कि ये जो मैं जो फरमाइश आप करती हैं, ये फरमाइश होती है मंडे के दिन की, क्योंकि फास्ट सॉन्ग है। और कल हमने आतिफ असलम का सॉन्ग चलाया भी था, बड़ा आपको पता है कल का मूड बड़ा फास्ट टेम्पो का मूड होता हमारा, और आज का मूड ये है कि जो आप सुन रहे हैं इस वक्त, ये गजल का मूड है ना, स्लो टेम्पो है, जरा पुरसकून सा माहौल है और हल्की हल्की सी लाइटें हैं, धीमे धीमे सुर हैं, और बस ये है कहानी आज की। तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। और उसके बाद शुजात मिर्जा का वाह वाह जबरदस्त, क्या कहें, आगाज आशिकी का मजा हमसे पूछिए। हाँ जी, ये तो है, बस अब आपसे पूछना पड़ेगा हमें, आगाज आशिकी का मजा आप बताएंगे, अंजाम आशिकी का मजा हमसे पूछिए। बेहतरीन गजल लुत्फ आ गया उस्ताद जी, तुसी ग्रेट हो, थैंक यू भाई, थैंक यू। इस चांदनी रात में आप शो, आपका शो और ये गजल मोहब्बतों के रंग बिखेरती हुई, वाह जबरदस्त, थैंक यू, बहुत शुक्रिया शुजात मिर्जा आपकी मोहब्बत का। उसके बाद कहते कि मैं गली कूचों में रुस्वा था मगर इतना न था, हाय हाय क्या कहने क्या कहने। हकीकत यही है कि मैं गली कूचों में रुस्वा था मगर इतना न था, क्या जबरदस्त मोती चुन चुन कर लाते हैं आप, अप्रिशिएट हो उस्ताद जी, थैंक यू जी। उसके बाद मीर हसन बरोई वली दात ने हमें जॉइन किया, सलाम शोभी भाई, मीर हसन बरोई, थैंक यू, वालेकुम सलाम, कैसे ठीक ठाक है, खैरियत से हैं आप, सही हैं आप, ठीक हो ना। हाईवे का मौसम कैसा, जरा ये तो बताएं, हाईवे पे कैसी मौसम है, सब ठंडा ठंडा है, क्योंकि इस वक्त मौसम में जो है रात में वो खुनकी सी महसूस होती है ना अब तो, और जैसी शाम होती हवाएं चलती तो ठंडी हवाएं तीर होती हैं, तो इस वक्त मौसम जो है वो कुछ चेंज सा भी है, और उसके साथ साथ मौसम कुछ बड़ा बेईमान सा भी है। मौसम को ये ना समझे कि सिर्फ गर्मी है, या ये ना समझे ठंड है, ये मिला जुला सा, मतलब यूं समझ लें कि आशिकी का भी है और जुदाई का भी है, ये दोनों मिला के जब बनेगा तो फिर वो बस इस तरह का मौसम इस वक्त चल रहा है। और ये मौसम ही की वजूहत है कि मेरा गला भी आपको होता कि अभी तक सही हुआ नहीं है, मगर अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर फिर भी, मगर मुकम्मल तौर पर इतना अभी सेट नहीं हुआ, जबरदस्त इसको सेट करके आता हूं मैं, और बस बहुत सेट करने के लिए मैं मेरे अपने टोटके जो मैं गोलियां वोली नहीं खाता, कोई चीज नहीं, बस अपनी मर्जी से इस तरह करते रहते हैं। तो खैर बाबा जी, वक्त गुजरता है, गुजर जाएगा। और मोहसिन नकवी साहब कहते हैं जगह कुछ, क्या खूबसूरत बात है मोहसिन नकवी साहब की, मैं जहां बलब था फिर भी असूलों पे अड़ गया, मैं जहां बलब था फिर भी असूलों पे अड़ गया, बुझता हुआ चिराग हवाओं से लड़ गया, बुझता हुआ चिराग हवाओं से लड़ गया, खाली पड़े हुए हैं परिंदों के घोंसले, खाली पड़े हुए हैं परिंदों के घोंसले,
ایسی ہوا چلی ہے ہر ایک پیڑ جھڑ گیا، خالی پڑے ہوئے ہیں پرندوں کے گھونسلے، ایسی ہوا چلی ہر ایک پیڑ جھڑ گیا، کس کس کا ساتھ دے کوئی میلے کی بھیڑ میں، کس کس کا ساتھ دے کوئی میلے کی بھیڑ میں، پھر یوں ہوا کہ وہ بھی اچانک بچھڑ گیا، کس کس کا ساتھ دے کوئی میلے کی بھیڑ میں، پھر یہ ہوا کہ وہ بھی اچانک بچھڑ گیا، میں نے قدم بڑھائے جو صحرا کی دھوپ میں، میں نے قدم بڑھائے جو صحرا کی دھوپ میں، گھبرا کے میرا سایہ میرے پاؤں پڑ گیا، گھبرا کے میرا سایہ میرے پاؤں پڑ گیا، اس آئینے کے عکس ہی ٹیڑے تھے سب کے سب، اس آئینے کے عکس ہی ٹیڑے تھے سب کے سب، مجھ کو یہ وہم تھا کہ میرا چہرہ بگڑ گیا، اس آئینے کے عکس تھے ٹیڑے یہ سب کے سب، مجھ کو یہ وہم تھا کہ میرا چہرہ بگڑ گیا، محسن دل غریب کی ویرانیاں تو دیکھ، محسن دل غریب کی ویرانیاں تو دیکھ، کیسا نگر تھا جو تیرے ہاتھوں اجڑ گیا، محسن دل غریب کی ویرانیاں تو دیکھ، کیسا نگر تھا جو تیرے ہاتھوں اجڑ گیا، خالی پڑے ہوئے ہیں پرندوں کے گھونسلے، خالی پڑے ہوئے ہیں پرندوں کے گھونسلے، ایسی ہوا چلی کہ ہر ایک پیڑ جھڑ گیا، میں نے قدم بڑھائے جو صحرا کی دھوپ میں، میں نے قدم بڑھائے جو صحرا کی دھوپ میں، گھبرا کے میرا سایہ ہی میرے پاؤں پڑ گیا، گھبرا کے میرا سایہ ہی میرے پاؤں پڑ گیا، اس آئینے کے عکس ہی ٹیڑے تھے سب کے سب، اس آئینے کے عکس سے ٹیڑے ہی سب کے سب، مجھ کو یہ وہم تھا کہ میرا چہرہ بگڑ گیا، مجھ کو یہ وہم تھا کہ میرا چہرہ بگڑ گیا، محسن دل غریب کی ویرانیاں تو دیکھ، محسن دل غریب کی ویرانیاں تو دیکھ، کیسا نگر تھا، کیسا نگر تھا جو تیرے ہاتھوں اجڑ گیا، کیسا نگر تھا جو تیرے ہاتھوں اجڑ گیا۔

उसे सोचना रात उसे सोचना, बेसबब यूं खिड़कियां खोलना। शमशेर अली की आवाज थी ये। शमशेर अली आपको पता है कि बड़ी खूबसूरत आवाज हमारे मुल्क की, गजल की बड़े खूबसूरत गायक, बस हमारे दरमियान नहीं, अल्लाह ताला उन तमाम लोगों की मगफरत करे कि जो हमसे बिछड़ चुके हैं। बड़े अच्छे दोस्त थे हमारे, बहुत खूबसूरत। और ये जो मैं इनकी जो गजलें ये मैं प्ले करता हूँ, ये कैसेट आई थी इनकी, और सीडी आई थी, तो इन्होंने जब रिलीज से पहले इन्होंने मुझे खुद दी थी, ये पुरानी बात हो गई। खैर जी, और अब उसके बाद शुजात मिर्जा क्या कहते हैं, बहुत ही गहरे अल्फाज हैं उस्ताद जी मोहसिन नकवी साहब के। बात यही है, अच्छा पता है लफ्ज तो तमाम शायरों के, तमाम लिखने वालों को बड़े गहरे ही होते हैं, क्योंकि वो जो बात कहते हैं ना वो मुआशरे को ऑब्जर्व करके कहते हैं, मुआशरे की तमाम चीजों को वो ऑब्जर्व करते हैं, महसूस करते हैं, वो महसूस करके फिर वो जो लफ्ज उनके लबों से अदा होते हैं और उनके जो एहसास जो नुमाया होते हैं, जो कलम की नोक से कागज पर आते हैं, उनमें वो तमाम चीजें जज्ब हो जाती हैं। और फिर वो बात वही है कि उनको समझने की बात है। एक आम आप एक पढ़ें या कुछ समझें तो ऐसे पढ़ के निकल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर अगर आप उन लफ्जों पर गौर करेंगे, अगर आपकी मेमोरी अच्छी है और आप मुताला आपका वसी है, अगर आपका मुताला वसी है, तो फिर ऐसी बहुत सारी चीजें आपको बड़े फायदे की लगेंगी, आप पर बड़ा गहरा असर छोड़ेंगी वो, क्योंकि शर्त यही है कि आपका मुताला वसी होना चाहिए। अगर आपको लफ्जों की इतनी सूझबूझ ही नहीं है तो फिर वो लफ्ज आपके लिए बेकार हो जाते हैं, वो लफ्ज आप पर अपना कुछ असर नहीं छोड़ते, कुछ असर नहीं होता उन लफ्जों का, अगर आप उन लफ्जों के बारे में जानते नहीं या उन लफ्जों की गहराई तक पहुंचे नहीं है तो वो बेकार है फिर आपके लिए। और जहां आप ने अगर एक बड़ा मुताला वसी किया है और पढ़ने पढ़ाने से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है, आज नहीं होगा माहौल ऐसा, मगर अगर रहा है तो यकीनन ये चीजें आप पर बहुत असर छोड़ती हैं। फिर तो जनाब इसके बाद कहते हैं, गला खराब होने के बावजूद आप जबरदस्त कलाम पेश कर रहे हैं, दाद देनी होगी, अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, जजाकल्ला। बस आप सबकी दुआओं से है, आप सब दुआ करते हैं, आप सब की दुआएं हैं, तो बस हम भी चल ही रहे इसी तरह और चलते रहेंगे, आप सब दुआ करते रहेंगे, हम चलते रहेंगे। सलीम कौसर साहब, अल्लाह ताला इन्हें जिंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बहुत बीमार हैं और सही तरह सलीम कौसर साहब से बोला भी नहीं जाता, वरना मैंने सोचा था कि कभी उनसे ऑनलाइन हम बात करेंगे, मगर फिर भी कोशिश करूंगा कभी उनसे बात करके उनका कलाम कुछ इस वक्त अब उनकी आवाज में

उनसे गुफ्तगू करके कॉल पर रिकॉर्ड करूंगा और फिर आप जरूर शामिल करूंगा प्रोग्राम में। बड़े अच्छे दोस्तों में रहे, उनका ताल्लुक पाकिस्तान टेलीविजन के कराची स्टूडियो से, कराची स्टेशन से रहा और स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट में बड़ा गहरा ताल्लुक रहा। बड़ी हमारी उठक बैठक होती थी, बहुत हम जाते थे, बड़ी गपशप होती थी वहां पर, बहुत अच्छा मतलब उनके साथ वक्त गुजरा हमारा। और ये शुरू की बात है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू, बड़ी मजेदार गुफ्तगू होती थी। सारा उनका जो एक डिपार्टमेंट था बड़ा, सारे पढ़े लिखे समझदार लोग होते, लाजमी एक स्क्रिप्ट का डिपार्टमेंट हो और वहां पर अगर सारे ऐसे लोग हों, अदबी लोग हों, तो फिर क्या अदबी गुफ्तगू होती है। कहती हैं एक जगह, और ये जो गजल मैं शामिल कर रहा हूं, इस गजल को बड़े सगीर की बड़ी बड़ी आवाजों ने, खूबसूरत आवाजों ने, लेजेंडरी वॉइस ने इसको अपनी आवाज से सजाया है। वो गजल क्या है, वो अल्फाज क्या है? मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। अजब एतबारो बे एतबारी के दरमियां है जिंदगी, अजब एतबारो बे एतबारी के दरमियां है जिंदगी। मैं करीब हूं किसी और के, मैं करीब हूं किसी और के, मुझे जानता कोई और है। मैं करीब हूं किसी और के, मुझे जानता कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। मेरी रोशनी तेरे खद्दो खाल से मुख्तलिफ तो नहीं मगर, मेरी रोशनी तेरे खद्दो खाल से मुख्तलिफ तो नहीं मगर, तू करीब आ तुझे देख लूं, तू करीब आ तुझे देख लूं, तू वही है या कोई और है। तो करीब आ तुझे देख लूं, तो करीब आ तुझे देख लूं, तू वही है या कोई और है। मैं करीब हूं किसी और के, मुझे सोचता कोई और है। तुझे दुश्मनों की खबर न थी, तुझे दुश्मनों की खबर न थी, मुझे दोस्तों का पता नहीं। तुझे दुश्मनों की खबर न थी, मुझे दोस्तों का पता नहीं। तेरी दास्तां कोई और थी, तेरी दास्तां कोई और थी, मेरा वाकया कोई और है। तेरी दास्तां कोई और थी, मेरा वाकया कोई और है। वही मुंसिफों की रिवायत थी, वही फैसलों की इबारतें, वही मुंसिफों की रिवायतें, वही फैसलों की इबारतें। मेरा जुर्म तो कोई और था, मेरा जुर्म तो कोई और था, ये मेरी सजा कोई और है। मेरा जुर्म तो कोई और था, ये मेरी सजा कोई और है। कभी लौट आए तो पूछना, कभी लौट आए तो पूछना, नहीं देखना उन्हें गौर से। कभी लौट आए तो पूछना, नहीं देखना उन्हें गौर से। जिन्हें रास्ते में खबर हुई, जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है, जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। मैं ख्याल हूं किसी और का, मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। मेरी रोशनी तेरे खद्दो खाल से मुख्तलिफ तो नहीं मगर, मेरी रोशनी तेरे खद्दो खाल से मुख्तलिफ तो नहीं मगर, तू करीब आ, तू करीब आ तुझे देख लूं, तू करीब आ तुझे देख लूं, तू वही है या कोई और है। तू करीब आ तुझे देख लूं, तू वही है या कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है।

रिश्ता एक बेनाम सातुत से जोड़ा जाता है क्यों। शकील हैदर का कलाम था और सोनू अली की आवाज थी। क्या खूबसूरत आवाज है, बड़ी क्लासिक मीठी सी आवाज है इनकी वैसे। और जनाब वक्त हो चुका है 2:06 FM पाकिस्तान के कराची स्टेशन से मैं आपके साथ मौजूद हूं मैं और आप सबको खुश आमदीद एक बार फिर। हमें ज्वाइन किया हुरम सलीम ने और कहते अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप, तबीयत कैसी है आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआ से, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मौजूद हूँ मैं। और शुजात मिर्जा कहते हैं वाह वाह जबरदस्त आला कमाल कमाल, थैंक यू जजाकल्ला, खुश रहें सलामत रहें। और उसके साथ साथ जनाब हमें ज्वाइन के सबमरीन ब्लूज भी हमें ज्वाइन कर चुकी हमारे साथ मौजूद हैं और थैंक यू वेरी मच कहती हैं। आज की शायरी आज का आज बहुत जबरदस्त आप शायरी पढ़ रहे हैं। मैं शायरी के प्रोग्राम कम कम सुनती तो जरूर हूँ मगर पार्टिसिपेट नहीं करती, मगर अब कुछ कुछ शायरी समझ में आने लगी है। चले अच्छी बात है, सिवाने कुछ तो हल निकला हमारे प्रोग्राम का कि आपको समीम बलोच कुछ कुछ शायरी पर समझ में आने लगी है। थैंक यू वेरी मच और उम्मीद है कि आप इसी तरह हमारा साथ देते रहेंगी इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में। और जनाब इसके साथ अब आते हैं हम एक बार फिर एक खूबसूरत से कलाम की जानिब और उसके साथ हमें ज्वाइन किया हुमा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और कह रहे शोभित जी दूसरी गजल मुजफ्फर वारसी की, मुझे कोई गम नहीं था तेरी आशिकी से पहले पहले मिलती है से मिलती है से पहले मिलती है। वो अलग है वो गम आशिकी वो अलग है, ये अलग बिल्कुल शायरी में टेम्पो में तमाम लफ्जों में है। उसके बाद कहते शोभा जी आज के शो में बैकग्राउंड म्यूजिक के फिर आपकी पोएट्री और फिर गजल खूबसूरत माहौल में ले जाता है। चले भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और ये यकीनन असल में ये बैकग्राउंड म्यूजिक है, आपको पता है कि ये जब से गजल का प्रोग्राम शुरू किया उस वक्त से ये बैकग्राउंड म्यूजिक है और इस बैकग्राउंड म्यूजिक को मैं यहां से था भी नहीं, बाहर गया था जब शुरू शुरू में तो वहां से लाया था सीडी लाया था, तो बस इतफाक से वो ऐसा लगा कि बस मजा ही आ गया। फिर ये इस कहते 30-31 सालों से ये म्यूजिक की बैकग्राउंड म्यूजिक यही मेरा पहचान जो है वो यही म्यूजिक है, इसमें कोई शक नहीं। और जनाब अब यूं करते हैं कि हम आते हैं एक और खूबसूरत कलाम की जानिब और ये खूबसूरत कलाम जनाब है बशीर बदर साहब का। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, कोशिश तो है कि कुछ खूबसूरती से अदा कर सकूं, कोशिश कर सकता हूं मैं, बाकी आप बेहतर समझते हैं कि वो सही खूबसूरती से अदा होता है या नहीं होता, मगर कोशिश बहरहाल मैं जरूर करता हूं। कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भी भटक गई, कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भी भटक गई, मैं चिराग वो भी बुझा हुआ, मैं चिराग वो भी बुझा हुआ, मेरी रात कैसी चमक गई। कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भी भटक गई, मैं चिराग वो भी बुझा हुआ, मेरी रात कैसे चमक गई। मेरी दास्तां का उरूज था तेरी नर्म पलकों की छाव में, मेरी दास्तां का उरूज था तेरी नर्म पलकों की छाव में, मेरे साथ था तुझे जागना, मेरे साथ था तुझे जागना, तेरी आंख कैसे झपक गई। मेरे साथ था तुझे जागना, तेरी आंख कैसे झपक गई। कभी हम मिले भी तो क्या मिले, कभी हम मिले भी तो क्या मिले, वही दूरियां वही फासले, कभी हम मिले भी तो क्या मिले, वही दूरियां वही फासले। न कभी हमारे कदम बढ़े, न कभी हमारे कदम बढ़े, न कभी तुम्हारी झिझक गई, न कभी हमारे कदम बढ़े, न कभी तुम्हारी झिझक गई, तुझे भूल जाने की कोशिशें कभी कामयाब न हो सकी, तुझे भूल जाने की कोशिशें कभी कामयाब न हो सकी। तेरी याद शाखे गुलाब है,
تیری یاد شاخِ گلاب ہے، جو ہوا چلی تو لچک گئی۔ تیری یاد شاخِ گلاب ہے، جو ہوا چلی تو لچک گئی۔ میں چراغ وہ بھی بجھا ہوا، میں چراغ وہ بھی بجھا ہوا، میری رات کیسے چمک گئی۔ میرے ساتھ تھا تجھے جاگنا، میرے ساتھ تھا تجھے جاگنا، تیری آنکھ کیسی جھپک گئی۔ میرے ساتھ تھا تجھے جاگنا، تیری آنکھ کیسی جھپک گئی۔ کبھی ہم ملے بھی تو کیا ملے، کبھی ہم ملے بھی تو کیا ملے، وہی دوریاں وہی فاصلے۔ کبھی ہم ملے بھی تو کیا ملے، وہی دوریاں وہی فاصلے۔ نہ کبھی ہمارے قدم بڑھے، نہ کبھی تمہاری جھجک گئی۔ نہ کبھی ہمارے قدم بڑھے، نہ کبھی تمہاری جھجک گئی۔ تجھے بھول جانے کی کوششیں، تجھے بھول جانے کی کوششیں کبھی کامیاب نہ ہو سکی، تجھے بھول جانے کی کوششیں کبھی کامیاب نہ ہو سکیں۔ تیری یاد شاخِ گلاب ہے، تیری یاد شاخِ گلاب ہے، جو ہوا چلی تو لچک گئی۔ تیری یاد شاخِ گلاب ہے، جو ہوا چلی تو لچک گئی۔ کہیں چاند راہوں میں کھو گیا، کہیں چاندنی بھی بھٹک گئی۔ کہیں چاند راہوں میں کھو گیا، کہیں چاندنی بھی بھٹک گئی۔ میں چراغ وہ بھی بجھا ہوا، میری رات کیسے چمک گئی۔ یہ خوبصورت کلام ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کا تھا، اور ہمیں جوائن کیا یوٹیوب پر طاہر مسعود نے، کہتے السلام علیکم شعبہ جی۔ وعلیکم السلام طاہر مسعود، آپ کو خوش آمدید کہتے، تھینک یو آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور اب اس کے بعد شامل کرتے ہیں آواز آصف میتی کی۔ کلام احمد فراز کا، سنا ہے لوگ اسے آگ بھر کے دیکھتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔

सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना तो बहुत कुछ है, चले देखते ट्राई करते हैं, क्या पता कुछ अलग ही हो जाए। वक्त 2:00 तकरीबन 22 मिनट हो चुके हैं। FM100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से मैं आपके साथ मौजूद हूं और जनाब आते हैं कुछ आपकी जानिब। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया YouTube पर, हमें ज्वाइन कर चुके हैं मैक्स NTTV पर। आप यकीन प्रोग्राम रेडियो पर तो आप सुन ही रहे हैं। FM100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से मैं आपके साथ मौजूद हूं। मैं इस प्रोग्राम की लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग अगर आप देखना चाहें तो आप यकीनन हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके लिए आपको आना होगा YouTube पर। अगर मौजूद हैं तो मैक्स MAKSHDTV एक साथ लिखेंगे तो सर्च करेंगे, सामने हमारा चैनल आ जाएगा, वहां पर हमारी वीडियो लाइव वीडियो मौजूद है। आप हमें लाइव कमेंट्स के जरिए प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, हमारा साथ दे सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप फेसबुक पर मौजूद हैं तो मेरी आईडी पर या मुख्तलिफ पेजेस पर जो है वो आप देखेंगे इसका लिंक मौजूद है, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप यकीन आ जाएंगे। और जनाब खुर्रम सलीम कहते हैं कि मोहब्बत लफ्जों की मोहताज नहीं होती, आंखें सब कुछ कह देती हैं। जी बिल्कुल हकीकत है, ये बात हकीकत है। वो कहते हैं कि आंखें बड़ी पागल हैं, हर बात बताती हैं, जो होंठ ना कह पाए वो गीत, जो होंठ ना गा पाए वो गीत सुनाती हैं। आंखें बड़ी पागल हैं, हर बात बताती। जी बिल्कुल वाकई। और अब जनाब यूं करते हैं कि उसके बाद फिर हमीद गुल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस्लामाबाद से, कहते हैं जनाब अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सलामत हमेशा, थैंक यू, जजाकल्ला जी, वालेकुम सलाम, आप ठीक है, खैरियत से हमीद गुल साहब, और खुश आमदीद। उसके बाद जनाब फिर हमें ज्वाइन कर नजीब साहब ने, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अजमेर शोबीब साहब, क्या हाल है आपके। वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। और आप हमारी फरमाइश पर वहीद मुराद का एक मैं ही बुरा हूँ बाकी सब लोग अच्छे हैं, ये सॉन्ग लगा दें इत्तेफाक से, ये हमारे फॉर्मेट में आ जाता है क्योंकि टेम्पो स्लो है इसका, मूड भी जरा ट्रेजेडी टाइप का है, तो यकीनन ये सॉन्ग चले बिल्कुल है भी सही, चले ठीक है, कोई मसला नहीं, आप सुना देंगे, थोड़ा सा इंतजार करें, साथ साथ बिल्कुल आपको सुनाते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर जनाब हमीद गुल साहब क्या कहते हैं कि हमारी दोस्ती अब भी है, लेकिन हमारी दोस्ती अब भी है लेकिन हमारे साथ वो बचपन नहीं है। कुशादा थे कभी आंगन दिलों के, कुशादा थे कभी आंगन दिलों के, दिलों में अब कोई आंगन नहीं है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, वाह वाह वाह, क्या है, माजी को आपने झंझोड़ दिया। हमारी दोस्ती अब भी है लेकिन हमारे साथ वो बचपन नहीं है। कुशादा थे कभी आंगन दिलों के, दिलों में अब कोई आंगन नहीं है। बहुत खूबसूरत जी, बहुत हमीद गुल साहब, बहुत जबरदस्त, वाह। उसके बाद जनाब फिर कहते हैं जाना चाहो तो जा सकती हो तुम, जाना चाहो तो जा सकती हो तुम, हम अभी दूर नहीं निकले हैं। कूचे जाना से कभी हम जैसे होके मजबूर नहीं निकले हैं। हमीद गुल साहब बहुत खूबसूरत जी, बहुत खूबसूरत, दोनों कलाम आपके बहुत खूबसूरत, जबरदस्त, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और उसके बाद जनाब मोहसिन नकवी साहब क्या कहते हैं, जरा मोहसिन नकवी साहब की भी हम सुनते चलें। मगरूर ही सही मुझे अच्छा बहुत लगा, मगरूर ही सही मुझे अच्छा बहुत लगा, वो अजनबी तो था मगर अपना बहुत लगा।
وہ اجنبی تو تھا مگر اپنا بہت لگا. روٹھا ہوا تھا ہنس تو پڑا مجھ کو دیکھ کر. روٹھا ہوا تھا ہنس تو پڑا مجھ کو دیکھ کر. مجھ کو تو اس قدر بھی دلاسا بہت لگا. مجھ کو تو اس قدر بھی دلاسا بہت لگا. صحرا میں جی رہا تھا جو دریا دلی کے ساتھ. صحرا میں جی رہا تھا جو دریا دلی کے ساتھ. دیکھا جو غور سے تو وہ پیاسا بہت لگا. صحرا میں جی رہا تھا جو دریا دلی کے ساتھ. دیکھا جو غور سے تو وہ پیاسا بہت لگا. وہ جس کے دم قدم سے تھی بستی کی رونقیں. وہ جس کے دم قدم سے تھی بستی کی رونقیں. بستی اجڑ گئی تو اکیلا بہت لگا. بستی اجڑ گئی تو اکیلا بہت لگا. نپٹا ہوا قہر میں وہ جیسے خزاں کا چاند. میلے لباس میں بھی وہ پیارا بہت لگا. محسن جب آئینے پہ میری سانس جم گئی. محسن جب آئینے پہ میری سانس جم گئی. مجھ کو خود اپنا عکس بھی دھندلا بہت لگا. مجھ کو خود اپنا عکس بھی دھندلا بہت لگا.

एक मैं ही बुरा हूँ, बाकी सब लोग अच्छे हैं। मैं झूठा हूँ, दुनिया के सब लोग सच्चे हैं। अपनी वो करते हैं लगे हाथों, शामिल करते हैं

جب کری

हाँ राम, क्या मजे की बात है।

حسن میں نفسی نفسی کرے گا جہاں کو

0: ایک طرف ہے طلب،
1: ایک طرف جستجو، ایک طرف ہے کوشش،
2: ایک طرف آرزو، روح ہم